आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद

0: मूज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में हरी ठाकुर की ये देशभक्ति पूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए मालविका कानन के स्वर में मीराबाई की रचना।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राजेंद्र मेहता और साथियों के स्वर में ये रचना।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए बौद्ध ग्रंथ धम्म पद से पाठ।
1: भगवान बुद्ध से किसी ने चार प्रश्न पूछे। पहला तो यह कि मनुष्य का श्रेष्ठ धन क्या है। दूसरा प्रश्न यह था किसके अभ्यास से सुख मिलता है। तीसरा प्रश्न था सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है। और चौथा प्रश्न था किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार वर्णन किया है। सद्दीध वित्तम पुरुषस्य सेठम धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चम हवे साधुतरम रसानम पय्या जीविम जीवित माहु सेठम। इस संसार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन है उसकी श्रद्धा। धर्म के अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। सब रसों में उत्तम रस है सत्य, और जो जीवन प्रज्ञामय है वही जीवन श्रेष्ठतम है। भगवान बुद्ध से एक बार चार प्रश्न और पूछे गए। पहला प्रश्न था मनुष्य पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को किस प्रकार पार करता है। दूसरा प्रश्न था संसार रूपी सागर को किस प्रकार तैरकर पार किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न था किस प्रकार दुख का अंत हो सकता है। और चौथा प्रश्न था किस प्रकार मनुष्य शुद्ध होता है। उसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा। सद्धाय तरति ओघम अपमादेन अन्नवम वीर्येन दुःखम अच्येति पय्याय परिशुज्यति। मनुष्य श्रद्धा के बल से पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से संसार सागर को पार कर लेता है, और वह पराक्रम से दुख का अंत कर लेता है, और प्रज्ञा के बल से विज्ञान के बल से वह परिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य किस प्रकार प्रज्ञा प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न पूछा किस प्रकार धन प्राप्त करता है। और तीसरा प्रश्न था किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करता है, किस प्रकार मित्रों की वृद्धि कर सकता है। चौथा प्रश्न था ऐसा क्या कार्य है जिसके करने से परलोक में जाकर पछताना नहीं होता। भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। सद्दहानो अरहतम धम्मम निब्बाण पत्या सुसुसा लभते पय्यम अपमत्तो विचक्षणो। निर्वाण की ओर ले जाने वाले अर्हतों के धर्म में जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विनय युक्त होता है, प्रमाद नहीं करता, ऐसा बुद्धिमान पुरुष प्रज्ञा को प्राप्त करता है। पतिरूपकारी धुरवा उठाता विन्दते धनम सच्चेन कित्तिम पप्पोति ददम मित्तानि गंधति। उचित काम को करने वाला दृढ़ और प्रयत्नशील पुरुष धन को प्राप्त कर सकता है। वह कीर्ति सत्य के बल से प्राप्त करता है, और दान देकर मित्रों की वृद्धि कर सकता है। सच्चम धम्मो धिति चागो सवे पेचन सोचति अस्मालोका परम लोकम सवे पेचन सोचति। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य की, धर्म की, धृति की और त्याग की वृत्ति होती है, ये चार धर्म जिस व्यक्ति में होते हैं, वह परलोक में जाकर कभी नहीं पछताता। इसलिए सत्य का, धर्म का, धृति का और त्याग का मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए।
0: धर्म ग्रंथों से पाठ में बौद्ध ग्रंथ धम्म पद से पाठ अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्त होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर ए हरिहरन का था और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए कीट नियंत्रण हेतु स्टीकर कार्ट विषय पर डॉक्टर खूबी राम साहू द्वारा दी गई जानकारी।
1: मैं डॉक्टर खूबी राम साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कीट विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बालोद पदस्थ हूँ। अभी आज हम जो कीड़ों के जो नियंत्रण के लिए जो स्टिकर उपयोग करते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये जो स्टिकर होता है ये इसलिए उपयोग करते हैं ताकि कीड़े इसमें आके चिपक जाते हैं और हमको कम से कम रसायन का उपयोग करना पड़ता है। ये एक जैविक तरीका है और इसको हम समन्वित कीट प्रबंधन में भी उपयोग करते हैं। और ये स्टिकर हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप, ग्रीन स्टिकी ट्रैप, ऑरेंज स्टिकी ट्रैप। ये अलग अलग कलर के स्टिकर होते हैं और इसका अलग अलग कलर रखने का कारण क्या है कि हमारे जो कीट अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं और वो कीट जो नुकसान करते हैं जो वो अलग अलग कलर को पसंद करते हैं और उसी पसंद के कारण से ये अलग अलग कलर के स्टिकर बनाए गए हैं। जैसे हम व्हाइट फ्लाई को पीला रंग बहुत पसंद है, तो अगर हम व्हाइट फ्लाई अगर हमारे खेतों में ज़्यादा दिख रहा हो, पीले रंग के स्टिकर हम हमारे खेत में लगाएंगे तो वो आराम से वो हमारे नुकसान करने से हमारा खेत हमारी फसल बच जाएगी, तो स्टिकर का उपयोग है। इसी प्रकार से हम ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, इस कलर के स्टिकर को हम लगाते हैं जिससे हम माहू और जो अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं वो हमको नुकसान नहीं करता। और इसी प्रकार से जो ऑरेंज जो कीट होता है उसके नुकसान खासकर जैसे हम DBM जिसको बोलते हैं, जो हमारे गोभी बंद गोभी इसमें जो कीड़ा लगता है जिसको हम डायमंड वैक मत बोलते हैं, जिसको हीरा कीट बोलते हैं, आप देखे होंगे छोटे छोटे छोटे इल्ली होता है जो हमारे गोभी में और हमारे पत्ता गोभी में रहता है, जिसको हमारे माताएं क्या करते हैं जब उस कीड़ा को निकालना होता है हल्दी या गर्म पानी से उसको डुबाते हैं तब वो कीड़ा निकल पाता है। अगर इस कीड़े को बचाव के लिए अगर हम खेत में ऑरेंज स्टिकी ट्रैप या ऑरेंज बकट ट्रैप बोलते हैं ये हम अगर लगा दें हमारे खेतों में तो हमारा कीड़ा बिना रसायन के ही हमारे खेतों की उसकी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के जो स्टिकी ट्रैप है हमारे खेतों में हम लगाएं, ये खासकर हमारी सब्जियों वालों खेती के लिए बहुत हमारी लाभदायक है। जैसे हमारे भट्टा हो गया, हमारा बंदी हो गया, गोभी हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया और खासकर हमारी जो सेमी वर्गीय सब्जी हैं सेम हो गया, बरबट्टी हो गया, इसके लिए बहुत हमारे लाभदायक हैं। और इसके साथ साथ हम देखे हैं खासकर मिर्च में बहुत नुकसान करते हैं, तो इन सब हम खेतों में ये सब स्टिकी ट्रैप हम लगाएं तो हम बहुत लाभकारी हमारे लिए रहेगा। और इसके साथ साथ हम देखें कि ये जो ट्रैप हैं ये हमारे जो वातावरण है उसके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसके लिए ना हमको कोई ज़्यादा लेबर लगता है ना ही हमारे वातावरण को नुकसान करता है, किसी प्रकार के इसमें रसायन नहीं होता है और ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। और अगर हम इसी प्रकार के ट्रैप हम जगह जगह हम लगाएंगे, जितने जगह हम लगाएंगे उतने जगह ही हमारे कीट आके चिपकेंगे, तो ये कीड़े क्या हो गए उसमें आके चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है इसकी पूरी पॉपुलेशन है वो पूरी खत्म हो जाती है, जिससे उसकी पीढ़ी बढ़ती नहीं है और हमको जैविक रूप से इसका नियंत्रण हो जाता है। और इसको हमको नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कीटनाशक या रसायन हमको उपयोग नहीं करना पड़ता, जिसके कारण से ये स्टिकर हमारे बहुत लाभदारी उपयोगी होती है। और सबसे बड़ी बात ये स्टिकर बहुत सस्ते मिलते हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रहता नहीं, आप किसान भाई आप बाजार से भी खरीद सकते हैं और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको। जो पन्नी मिलती होगी, जो झिल्ली जिसको बोलते हैं, पीला रंग का जो मोटा रंग का पहले आता था, जिसको पहले हमारे किसान भाई मोरी के लिए उपयोग करते हैं या दूसरे कामों के लिए उपयोग करते हैं, तो वो ऐसे झिल्ली थोड़ी मोटी झिल्ली ले लें और उसमें ग्रीस मोटा होता है वो उसका उपयोग करें, या ग्रीस उपलब्ध ना हो तो ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जला वाला ऑयल जो निकलता है हमारे ट्रैक्टरों से निकलता है या दूसरों से निकलता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कम खर्चे में हमारे किसान भाई अपने घर में खुद ये स्टिकी ट्रैप बना सकते हैं। और अगर मेहनत ना करना चाहें किसान तो ये हमारे बाजार में भी हमारे उपलब्ध हैं और ये विभिन्न प्रकार के स्टिकी ट्रैप उपलब्ध हैं।

0: किसान भाई देख लें कि कौन सा कीड़ा उससे खेत में है, वो ये कोई भी ये लगा सकते हैं और बहुत कम खर्च में इसका उपयोग करें, किसान भाई लाभ ले सकते हैं और अपने खेती की लागत को कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टिकर बनाने के लिए मैं आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसे उपयोग करें और अपने किसान अपने फसल को सुरक्षित बनाएं। लाभदायक कीड़े और उनकी वृद्धि कैसे करें, ठीक है।
1: कृषि चर्चा में कीट नियंत्रण हेतु स्टिकर कार्ड विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर खूबीराम साहू। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 से रात 8:45 तक, रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, जिसमें आज आप सुनेंगे योग और नींद विषय पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के राज्य प्रभारी श्री छवि राम से विशेष संवाद, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर ब्लड डोनेशन जरूरतमंदों की मदद इस विषय पर हेल्पिंग इंडिया फाउंडेशन की स्टेट फाउंडर बबीता अग्रवाल से होगी खास बातचीत, और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रतिष्ठित रंगकर्मी और अभिनेता डॉक्टर आनंद कुमार पांडे से होगी विशेष चर्चा। प्रस्तुतकर्ता होंगे देवव्रत भगत। बच्चों के कार्यक्रम किसले में सुबह 8:30 पर बच्चों की डायरी का विषय होगा रक्तदान महादान। साथ ही सुनिएगा क्रम नव अंकुर में इसरो से प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के लिए चयनित अभिषेक खरे से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की बातचीत, और होंगे क्रम बच्चों के मुख से और बाल गीत। सुबह 9 कार्यक्रम खेल संसार में आज आप सुनेंगे साप्ताहिक खेल समीक्षा, और छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के रायपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला से भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। एक बस्ती एक मौत ये नाटक सुनिएगा सुबह 10:30 पर। लेखक श्री जयनंदन और निर्देशक होंगे श्री शाहिद अनवर। दिन के 11:05 पर समय होगा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का। आप मन के गीत दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा रक्तदान कर जीवन दान दे सकते हैं, और विकास की नई दिशा और नारी शक्ति विषय पर होगी वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती रश्मि द्विवेदी। साथ ही सुनिएगा गीत संगीत और टिप्स में चर्चा के विषय होंगे पुस्तकों का रखरखाव और वृद्धजनों के लिए भोजन व्यवस्था। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा विश्व रक्तदान दिवस। साथ ही आप सुनेंगे रागनंदिनी। आलेख और संपादन बीरभान साहू का, और प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमिता रॉय बर्मन। और होंगे क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में आज आप सुनेंगे गरियाबंद जिले की चिट्ठी, आलेख फरहाज मीमन का होगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालानगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंद

0: बल्लेबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। साथियों, इन दिनों रायपुर के लोगों को अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है बारिश। सुबह से लेकर शाम तक बस लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में मानसून कब आएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक दो दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है, यानी तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे भी गांव में किसान खेतों की तैयारी कर बैठे हैं, ट्रैक्टर चल चुके हैं, बीज तैयार हैं, बस आसमान से पानी गिरने का इंतजार है। वहीं शहरों में भी लोग बारिश की पहली मानसूनी फुहारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बस अब इंतजार उन काले काले बादलों का है जो आसमान में छा जाएं, धरती की प्यास बुझाएं और हर चेहरे पर राहत की मुस्कान ले आएं। क्योंकि अब तो लगता है कि पूरा शहर इन दिनों बादलों से बात कर रहा है। जहां देखो वहीं एक ही बात सुनाई देती है, बहुत इंतजार कर लिया, अब आ भी जाओ, अब बरस भी जाओ।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने में है। जब किसी की मदद से चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसका सुकून अलग ही रहता है। इसी बात को मशहूर समाजसेवी बाबा आमटे यानी मुरलीधर देवीदास आमटे जी ने बेहद खूबसूरती से कहा था, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। और शायद यही बात आज के दिन को भी खास बनाती है। क्यों, ये जानने के लिए आइए अब बढ़ते हैं आगे आज के इतिहास की ओर। साथियों, आज 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान कर किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी बचाने में मदद करते हैं। इतिहास के पन्नों में आज का दिन विज्ञान की दुनिया के लिए भी खास है। साल 1949 में आज के ही दिन अल्बर्ट द्वितीय नाम का सीरस बंदर अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला बंदर बना। वहीं 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इतिहास के ये पन्ने हमें नई राह दिखाते हैं, लेकिन

चीजें ऐसी भी होती है जो हमें अतीत की ओर ले जाती है, खासकर जब मौसम करवट लेने लगे, दूर आसमान में बादल दिखाई दे, हवा में ठंडक घुलने लगे और काली काली घटाएं घिरने लगे। ऐसे में ना जाने क्यों कुछ पुराने चेहरे, कुछ पुरानी बातें और कुछ मीठी यादें मन में फिर लौट आती है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और

0: सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियां भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें। हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
1: दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में प्रदर्शन कला के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए अभिनय श्रेणी में छत्तीसगढ़ के जशपुर निवासी रंगकर्मी और अभिनेता डॉक्टर आनंद कुमार पांडे का चयन किया गया है। रंगमंच के क्षेत्र में उनकी सक्रियता और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस पहचान के बाद उनसे हमने उनके रंगमंचीय सफर, अभिनय के अनुभवों और इस उपलब्धि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की है। आइए सुनते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि जशपुर के प्रतिष्ठित रंगकर्मी और अभिनेता डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि छत्तीसगढ़ की रंगमंचीय परंपरा की भी पहचान है। आज उनसे इसी उपलब्धि और रंगमंचीय सफर के बारे में बातचीत करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: सबसे पहले तो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सवाल ये भी रहेगा कि ये पुरस्कार मिलने पर सबसे पहले आपके मन में क्या विचार रहा आया?
2: जी बिल्कुल, मैंने चूंकि मैं अभी 40 वर्षों का होने वाला हूँ
1: जी,
2: तो ये बिल्कुल अंतिम समय होता है और संगीत नाटक एकेडमी के जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की जो योजना है
1: जी,
2: उसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष तक है। लिस्ट जब आई, प्रेस रिलीज जब आई, तो मुझे पता चला कि जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम है। तो मैंने ना कोई उम्मीद की थी ना कुछ ऐसा सोचा था कि ये सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन ये हुआ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है
1: जी। बिल्कुल, और क्योंकि जशपुर जैसे क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान बनाना आसान नहीं है, तो आपके लिए ये सफर कैसा रहा?
2: ये सफर बहुत चुनौतीपूर्ण सफर रहा है। जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफर ही बहुत चुनौतीपूर्ण सफर है, और विशेषकर कला के किसी भी माध्यम में आप काम कीजिए तो वो बहुत भारत में तो चुनौतीपूर्ण होता ही है।
1: आनंद जी, लेकिन रुझान कैसे पैदा हुआ कि रंगमंच और अभिनय की दिशा में ही आपको जाना है?
2: संगीत नाटक एकेडमी का ही बहुत बड़ा योगदान है इसमें
1: जी।
2: 2007 में युवा रंगकर्मी कार्यशाला नाम से एक कार्यशाला लगी थी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में
1: जी।
2: और नाटक से बिल्कुल अनजान था मैं। जसपुर से दो लोग जाने वाले थे उस कार्यशाला में भाग लेने के लिए
1: जी जी।
2: संयोग बस एक व्यक्ति उसमें से किसी कारणवश नहीं जा पाए तो उनकी जगह मुझे भेजा गया कि आनंद भाई आप जो है जाइए, वहां नाटक की कार्यशाला लगी है तो नाटक की कार्यशाला कीजिए। सामान्य ज्ञान की किताब में पढ़ रखा था कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है कोई, तो मुझे लगता था कि ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, रविशंकर विश्वविद्यालय है, ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ये अलग से ये कैसा विश्वविद्यालय है। तो कुछ ना कुछ तो मन में रहा होगा, कहीं ना कहीं अंदर में कोई कला तो छुपी होगी
1: जी,
2: तो ये रुझान बना होगा। तो संगीत नाटक एकेडमी की कार्यशाला में जब मैं गया, वहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रशिक्षक और राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे प्रशिक्षक जो है वो आए हुए थे और नाटक की कार्यशाला थी एक महीने की। तीसरा या चौथा दिन था तभी मैंने ये तय कर लिया कि मुझे जो करना है और मुझे जो कहना है वो माध्यम मेरा नाटक का ही होगा, रंगमंच का ही होगा। मैंने बस घर पे फोन लगा करके बताया कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ।
1: और अभिनय जीवन का कोई ऐसा नाटक या ऐसा किरदार जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहा या आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है?
2: बहुत सारे ऐसे नाटक तो मैंने कोर्स के दौरान भी किए हैं और उसके बाद भी किए हैं
1: जी।
2: बाबा पाखंडी जो है एक बहुत बढ़िया नाटक है, डॉक्टर योगेंद्र चौबे

0: सर ने उसे निर्देशित किया है, उसमें भी अभिनय किया मैंने। साथ ही आलोपी वर्मा एक बड़े निर्देशक रहे हैं। तो कोर्स के दौरान ही मैंने क्या करेगा काजी एक नाटक किया था, उसमें एक जवां मर्द का किरदार था, वो भी मैंने किया। फिर आगे चल करके जैसे जैसे थोड़ी समझ बनी और समझ बढ़ी, तो मास्टर्स करते वक्त एक प्रोजेक्ट होता है कि आपको एक सोलो नाटक एक छोटा सा तैयार करना होता है, और वो आपके परीक्षा का हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल। और वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में रंगमंच और लोक कला की जो स्थिति है वो आप क्या देखते हैं, और ऐसे युवा जो कि अभिनय और थिएटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे?
0: छत्तीसगढ़ में लोक कलाओं की और रंगमंच की स्थिति में दोनों में थोड़ा तो अंतर है। लोक कलाओं में बहुत सारे युवा जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको मंच भी मिल रहा है और वो कलाकार बन भी रहे हैं।
1: जी
0: मैदानी जो क्षेत्र है अपने छत्तीसगढ़ का, उसमें नाचा गम्मत की बहुत अच्छी परंपरा है और लगातार उसमें लगभग 300 समूह हैं जो नाचा गम्मत के समूह हैं, और लगातार वो गणेश चतुर्थी के समय से उनकी प्रस्तुतियां शुरू होती हैं और वो होली तक वो प्रस्तुतियां चलती हैं।
1: तो इस सम्मान के बाद आपकी
0: बिल्कुल।
1: आगे की क्या योजना है?
0: अब मेरा एक समूह है
1: जी,
0: छत्तीसगढ़िया क्लाउड एसोसियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ये हमने वर्ष 2017 से रजिस्टर कराया और अपने काम करने की शुरुआत की। तो पहली बार 2017 में ही हमारे समूह को मुंबई में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो
1: जी।
0: हमने वहाँ अपने नाटक के प्रदर्शन के लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ हमारा विंसेंट अ फ्लैशबैक एक 75 मिनट का नाटक है, जो विंसेंट वैन गोग के जीवन और उनकी कला के प्रति जो द्वंद है उस पर आधारित एक नाटक है। तो
1: जी,
0: उसकी प्रस्तुति जो है मुंबई के काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में 2017 में हुई, तो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ऊर्जा मिली वहां से, और ये भी और प्रेरित हुआ और नाटकों को करने के लिए। तो उधर से फिर ये सिलसिला चालू चालू हुआ और अभी तक चल रहा है।
1: बिल्कुल। आगे भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं, और आनंद जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जसपुर की जनता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा ये अपना सम्मान मैं समर्पित करता हूँ, और ये सम्मान केवल मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की कला बिरादरी का सम्मान है। बहुत धन्यवाद।

0: साथियों, योग और नींद दोनों ही स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्हीं दोनों विषयों के आपसी संबंध और दैनिक जीवन में इनके महत्व पर हमने बातचीत की है छबीराम साहू जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के राज्य प्रभारी हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत। साथियों, आज की व्यस्त और तनाव भरी जिंदगी में अच्छी नींद एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को शांत कर बेहतर नींद में भी मदद करता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं छबीराम साहू जी, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर और भारतीय शिक्षा बोर्ड के छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी। साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: आपको भी नमस्कार। ओम
0: जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप यही बताइए कि योग और अच्छी नींद के बीच क्या संबंध है।

0: योग में निद्रा जो है, अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। निद्रा जो है एक सुखद अनुभूति है
1: जी,
0: एक भगवान का वरदान है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो हमारे विचार हैं उनको पंचतया बताया, उसमें प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या, उसमें चौथे स्थान पर उन्होंने निद्रा को भी एक प्रकार का विचार ही बताया है।
1: जी,
0: वास्तव में नींद जो होता है
1: जी
0: वो हमारा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच एक अभाव सा प्रतीत होता है महर्षि पतंजलि के अनुसार।
1: जी,
0: तो उस समय व्यक्ति जो है माने ना तो जागने की अवस्था है ना स्वप्न की अवस्था है।
1: जी
0: और महर्षि चरक ने भी नींद के बारे में बताया है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मेति। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए और सुदृढ़ रहने के लिए आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य
1: जी
0: ये तीन उप स्तंभ बताए उन्होंने।
1: बिल्कुल,
0: उसमें नींद जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो स्वस्थ रखने के लिए, अर्थात योग के द्वारा हम कैसे नींद को पूरा करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: यकीनन, और क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा और नींद आने की समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है?
0: आजकल जो हमारे जो भागदौड़ की जिंदगी में आदमी के पास ज्यादा हर चीज में ज्यादा कार्य करने की अति होती है, माने उपयुक्त तो होना चाहिए, हर चीज में उपयुक्तता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुखा। आहार व्यवहार आदि आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका शयन और जागरण का समय जो है नियमित होना चाहिए। ये अनियमित है, आदमी ज्यादा काम कर रहा है कम सो रहा है, या माने जैसे भी उनका जागने और उठने का समय भी अनियमित है, तो फिर वो व्यक्ति जो है दुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 6वें अध्याय में 17वें 6.17 में बताए हैं कि वो दुखी रहेगा। सच्चा योगी शयन और जागने का समय को नियमित करेगा।
1: बिल्कुल, और ऐसे कौन से योगासन या प्राणायाम हैं जिन्हें सोने से पहले किया जा सकता है, और क्या नियमित योगाभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यदि अनिद्रा की अवस्था है व्यक्ति को, नींद नहीं आती जल्दी से,
1: जी,
0: तो उनको एक तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पैर को तलवे को रगड़कर गर्म पानी के साथ सोने के पहले रगड़कर सोना चाहिए
1: जी।
0: दूसरी बात, उनको सोने के पहले 5-7 बार भ्रामरी कर ले, अनुलोम विलोम कर ले
1: जी।
0: या ओम का उच्चारण कर ले, मस्तिष्क में ऐसे गुंजन भी कर ले, वो महाप्राण ध्वनि भी यदि निकाल लेते हैं तो मस्तिष्क शांत हो जाता है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के लिए योग और नींद को लेकर के कोई अलग सुझाव हो तो?
0: स्वस्थ व्यक्ति के लिए जैसे मैं 6 घंटे बताया, ऐसी बुजुर्ग है और बच्चे हैं उनको कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए
1: जी।
0: आज हमारी दिनचर्या बदल गई है, जबकि हमारी अंग्रेजी में कहावतें हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइस, जल्दी सोने और जल्दी उठने से व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क अच्छा काम करेगा।
1: अभी एक बात जो है वो देखने को मिलती है, या आम दिनचर्या में ही कई लोग जो है मोबाइल और जो लैपटॉप स्क्रीन हो कंप्यूटर हो के सामने बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, तो इसका नींद पर क्या असर पड़ता है? और क्योंकि अब चीजें जरूरी भी है, तो इसमें ऐसे कौन से योग हैं जिससे योग मदद कर सकता है इस चीज में?
0: इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी।
0: आदमी जो बहुत देर तक लैपटॉप में जो काम कर रहे हैं तो मस्तिष्क का चलायमान होता है, उस अवस्था में हम योग निद्रा जो कम समय में अधिक विश्राम देता है
1: जी।
0: योग निद्रा करने के बाद आदमी फिर से सोने और जागने की जो सचेत अवस्था होती है
1: बिल्कुल,
0: इसमें यदि हम 20 से 30 मिनट भी योग निद्रा लेते हैं तो उससे आपका आंख भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आप तनाव में नहीं रहेंगे। एक चीज है, आदमी लैपटॉप में काम करते करते करते करते वो सामने उसको खासकर सर्वाइकल पेन हो जाता है, एक तो नींद की प्रॉब्लम होती है साथ साथ सर्वाइकल पेन होता है और उसी को सोचते रहता है। सोने के पहले वो लैपटॉप में काम करके जाता है, वही को सोचते रहता है, जैसा हम सोचते हैं सोने के पहले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मस्तिष्क चलते रहता है।

0: से नींद भी नहीं आती, छटपटाता रहता है, बीपी बढ़ जाता है, अवसाद में जाता है वो, और थकावट सा महसूस करता है जब सुबह उठता है तो पूरी आनंद नहीं होता उसको। ये योग निद्रा या नींद जो है एक अद्भुत आनंद की अनुभूति है जो भगवान ने दिया है हमें।
1: जी अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है ताकि वो योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें?
0: श्रोताओं के लिए यही है कि वो समय पर सोएं और समय पर उठें, साथ ही साथ योगाभ्यास भी करें, शरीर को एक प्रकार से स्वास्थ्य दें, उसमें हम भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम नींद को भी पूरा कर सकते हैं। योग निद्रा के माध्यम से हम 20 से 30 मिनट में अपनी थकान मिटा सकते हैं और साथ साथ हमें सामान्य व्यक्ति को 6 घंटा अवश्य नींद लेना चाहिए के लिए।
1: जी छविराम साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, ओम प्रणाम।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन ठेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: साथियों, आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर रक्तदान के महत्व, जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त की उपलब्धता कराने की चुनौती और साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास को लेकर हमने बातचीत की है हेल्पिंग हैंड क्लब फाउंडेशन की स्टेट प्रेसिडेंट वुमन विंग बबीता अग्रवाल से। आइए सुनिए। साथियों, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अक्सर एक्सीडेंट, ऑपरेशन या फिर गंभीर बीमारी के दौरान मरीजों को तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे समय में कई परिवारों को डोनर ढूंढने और ब्लड की व्यवस्था करने में काफी परेशानी होती है। जरूरतमंदों की मदद के लिए काम कर रही संस्थाओं में से एक है हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन। आज हमारे साथ हैं संस्था की स्टेट प्रेसिडेंट वुमन विंग। इनसे ही जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर लोग कैसे मदद ले सकते हैं और ब्लड डोनेशन से हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो नमस्कार, रायपुर में बहुत बहुत स्वागत है बबीता अग्रवाल जी आपका।
3: नमस्ते सभी को।
2: जी मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी मरीज को अचानक ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन उनकी किस तरह से मदद करता है।
3: जी, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो जनरली सभी ब्लड बैंक में हमारे नंबर है, अवेलेबल होते हैं, या किसी के पहचान के थ्रू हमारे पास मैसेज आ जाता कि उनको ब्लड की नीड है।
2: जी जी।
3: तो हम तुरंत कोशिश करते हैं कि उनके लिए, हम लोग ने हर ब्लड ग्रुप का एक ग्रुप बनाया है, जैसे बी पॉजिटिव का एक ग्रुप है, ओ पॉजिटिव का एक ग्रुप है, तो हम तुरंत उस ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि इनको ये ग्रुप का ब्लड की जरूरत है, आप में से कौन जा पाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे डोनर है जो तुरंत रेडी हो जाते हैं, रात को भी जाने तैयार होते हैं और वो तुरंत बोलते हैं कि मैं चला जा रहा हूँ, जो फ्री होता है उस टाइम पर तुरंत चला जाता है।
2: और ये संस्था बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, किस तरह से ये पूरी संस्था बनी और कैसे आप लोगों ने लोगों को जोड़ा इसमें?
3: ये संस्था एक्चुअल में अंकित अग्रवाल जी ने बनाई थी।
2: जी जी।
3: शुरुआत अंकित अग्रवाल जी ने, खरसिया से है अंकित अग्रवाल जी।
2: जी जी।
3: और तब उन्होंने, जब ये कोरोना टाइम पे लॉकडाउन था और जो मजदूर भटक रहे थे, फिर तब उनके लिए उनने वो किया था शुरू की।

0: फूड की व्यवस्था करवानी है, मास्क की व्यवस्था करवानी है, ये सबसे शुरू हुई थी। इसके बाद फिर जब प्लाज्मा की जरूरत हुई कोरोना में, तो
1: जी
0: हम लोग प्लाज्मा मतलब उनकी व्यवस्था करवा रहे थे। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो हम लोगों ने सोचा अब हम ब्लड के लिए काम करते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर हम लोग ब्लड के लिए काम करने लगे।
1: और अगर किसी मरीज को अचानक ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आपकी संस्था कैसे मदद करती है? वो चैन किस तरह का है, एक प्रोसेस बता दीजिए आप।
0: हाँ, चैन प्रोसेस भैया वही है कि ब्लड बैंक से, अगर ब्लड बैंक में होता है ब्लड तो हम कोशिश करते हैं वहीं से इशू करवा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है,
1: जी
0: वहाँ फ्रेश ब्लड ही लगता है, तो फिर हम डोनर भेजते हैं।
1: अच्छा
0: एक जैसे लीवर ट्रांसप्लांट केस है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लगता है,
1: जी जी
0: तो
1: और
0: उसमें भी हम लोगों ने अभी एक केस था, एक साल पहले की बात है,
1: जी जी
0: तब ओ निगेटिव चाहिए था हम लोगों को,
1: जी
0: और उसमें जो डोनर था जो रिसीवर था दोनों का निगेटिव था,
1: जी जी
0: तो हम लोगों ने करीब 30-35 यूनिट ब्लड इकट्ठा करवाया था।
1: 30-35 यूनिट। और
0: हाँ
1: किसी भी तरह से जैसे ब्लड डोनर जुटाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है आप लोगों के सामने?
0: सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है भैया, जैसे कोई अभी बालकों है, बालकों के लिए डोनर कोई नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि
1: जी
0: दूर बहुत हो जाता है और टाइमिंग उनका बहुत वो है, 5 बजे के बाद वो लेते नहीं है
1: जी
0: डोनेशन, तो ऑफिस टाइम से के बाद ज्यादातर मेंबर जो वर्किंग में भी होते हैं ना, उनका तो अपना काम भी होता है, तो
1: जी
0: लोग चाहते हैं हम शाम को चले जाए या मॉर्निंग चले जाए, तो जैसे एम्स है या बालको है, इन लोगों में शाम को डोनेशन नहीं होता है, तो
1: अच्छा
0: तकलीफ होती है हमें वहाँ भेजने के लिए, वो
1: अच्छा
0: 4 बजे के बाद, बालकों में तो 4-4:30 के बाद ही नहीं लेते हैं, तो फिर तकलीफ होती कि हम कैसे उनको प्रोवाइड करवाएं। फिर हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक से कि आप वहाँ से प्रोवाइड करवाइए, हम कल भेजेंगे आपके पास डोनर।
1: अच्छा और अगर कोई मरीज है उसके ब्लड की अचानक जरूरत पड़ जाए तो आपकी संस्था से वो कैसे संपर्क करके मदद ले सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है?
0: मैं बताया था आपको जैसे कि सभी ब्लड बैंक पे हमारे नंबर है, जो ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर होते हैं जो
1: जी
0: इंचार्ज हैं, उन लोगों के पास हमारे नंबर अवेलेबल है, वो लोग भी बता देते हैं कि आप इनसे मिल लीजिए अगर आपको ब्लड की प्रॉब्लम है तो, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास उन लोग भेज देते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं
1: जी
0: उनको आने की कोई जरूरत, फोन पे ही बात करते हैं तो हम लोग बस। हाँ लेकिन हम लोग का एक नियम है, हम लोग जब तक ब्लड रिक्वेस्ट स्लिप नहीं मिलती हमें कि हम देखते नहीं कि हाँ सत्य, क्योंकि कई बार फ्रॉड भी होता है, लोग जबरदस्ती किसी को वो नहीं करें, बदमाशी नहीं करें, तो हम लोग जब तक डॉक्टर की स्लिप नहीं मिलती है हम कोई डोनर नहीं भेजते हैं, और
1: अच्छा
0: डोनर के जाने से उसके लौट के आने तक हम लोग पूरे टाइम कोशिश करते हैं उसके टच में रहे कि वो वापिस आ गए घर तक, हम लोग उनका पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का।
1: अभी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस अभियान में किस तरह की देखती हैं आप?
0: अभी तो काफी एक्टिव हो गए हमारे युवा, बहुत अच्छा लग रहा है कि सोशल बहुत हो रहे हैं, वो समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, ब्लड के उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बोलना नहीं। अभी एक बच्चे का 18 साल कंप्लीट हुआ उसका, तो उसने खुद से बोला कि मेरा डोनेशन करवा दीजिए, वो और उसके मम्मी पापा दोनों उसके बर्थडे पे तीनों लोगों ने जाके ब्लड डोनेट किया।
1: बिल्कुल। और नियमित ब्लड डोनर बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगी और अंत में श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नियमित बनना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी मेल मेंबर हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है और फीमेल 4 महीने बाद डोनेट कर सकती है, और इसके डोनेशन से आपको कोई प्रॉब्लम 15-20 मिनट के बाद आप घूम फिर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, काम नॉर्मल, कुछ दिक्कत नहीं होती है, और करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जिसको ब्लड डोनेट करना है उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, आपका 12.5 से ऊपर होगा HB तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच में।
1: जी बिल्कुल। बबीता जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद आप सभी का, आप सब लोग रक्तदान करें, रक्तदान जीवन दान।
1: थैंक यू मैम।

साथियों, किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपका एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। तो साथियों, इस विचार के साथ ही अब वक्त हो चला है नमस्कार रायपुर से विदा लेने का। तो दीजिए इजाजत देवव्रत भगत को। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे देवव्रत भगत। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
2: ये राशन के

0: 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर

ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले

0: कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार

0: 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and

0: मिलकर खुशियां बांटिए, मिलकर बांटे प्यार, दूसरों के जो काम आए वही सच्चा उपकार। नमस्कार प्यारे बच्चों, किसले के इस अंक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे, खेल रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, नई नई बातें सीख रहे होंगे। मैं हूं आपका धीरेंद्र भैया, आओ मिलकर बोलें जय हिंद। बच्चों, आज 14 जून है और आज पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का संदेश है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। वाकई एक छोटी सी बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। रक्तदान क्या है, इसका महत्व क्या है, यह जानने से पहले एक छोटी सी बात बताइए। अगर कक्षा में पढ़ाई के दौरान आपके सहपाठी मित्र की पेंसिल या पेन खो जाए तो क्या आप उसे अपनी पेंसिल देंगे? यदि कोई बच्चा टिफिन लाना भूल जाए तो क्या आप अपना खाना उसके साथ बांटेंगे ना? कोई दोस्त उदास हो तो आप उसे हंसाने की कोशिश करेंगे ना? हाँ, आप करेंगे। आप सभी हैं ही इतने प्यारे बच्चे। बच्चों, दूसरों की मदद करना, उनके काम आना अच्छी बात है। यही बात हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। अब सोचिए, अगर कोई बहुत बीमार हो, किसी को इलाज के दौरान खून की ज़रूरत हो, तब क्या आप मदद की जा सकती है? जवाब है, बिल्कुल मदद की जा सकती है, रक्तदान करके, यानी अपना खून दान करके। अभी आप छोटे हैं इसलिए रक्तदान नहीं कर सकते, रक्तदान केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं। लेकिन छोटी उम्र में आप यह जरूर समझ सकते हैं कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण होता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जो बड़ा होता है अपनी इच्छा से रक्तदान करता है तो वह किसी की मदद करता है, किसी की जान बचाता है। इसलिए रक्तदान जैसा महादान करने वालों के सम्मान में भी आज का दिन हर साल मनाया जाता है। एक ज़रूरी बात यह भी जानिए, विश्व रक्तदाता दिवस महान वैज्ञानिक कार्ल लैड स्टीनर के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 14 जून 1868 को ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ। उन्होंने ही ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की थी। यह दिन उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी है। एक वैज्ञानिक की खोज ने रक्तदान का रास्ता खोल दिया और न जाने कितने लोगों की जान बचाई। तो बच्चों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मदद करने का भाव हमें महान बनाता है। मदद का हाथ बढ़ाओ, खुशियों के दीप जलाओ, मानवता का रखो सम्मान, रक्तदान है महादान। बच्चों, जैसे विज्ञान की खोज ने रक्तदान का कार्य प्रशस्त किया, ठीक वैसे ही न जाने कितने वैज्ञानिकों ने विज्ञान को पढ़कर शोध करके अनगणित आविष्कार किए, मानवता के रक्षक बने। वैज्ञानिक होना बड़े गर्व की बात है। आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आइए आपको अगले क्रम नव अंकुर में इसरो के प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के लिए चयनित अभिषेक खरे से मिलवाते हैं, जो आप ही की तरह नन्हे साथी हैं लेकिन अपनी प्रतिभा से बाल वैज्ञानिक होने का गौरव उन्होंने पाया है। नमस्कार नन्हे साथियों, बचपन से ही प्रतिभा निखर जाए तो उसे उचित मंच मिल जाता है। अगर आपके भीतर कोई प्रतिभा है और उसे उचित स्थान मिल जाए तो वो निखर कर सामने आती है और दुनिया के काम आती है। ऐसे ही एक नन्हे साथी से हम आज आपको मिलवाएंगे, जिसने बचपन में ही अपनी प्रतिभा को पहचान लिया और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर कवर्धा के छात्र, जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, अभिषेक खरे, आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जिनका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के लिए चयन हुआ है। अभिषेक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये उपलब्धि हासिल की है।
1: थैंक यू सर, इसके लिए आप सभी का।
0: तो अभिषेक, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको विज्ञान की में रुचि कैसे जागी आपकी और आपका चयन कैसे हुआ, किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया, चुना और आपने उसके लिए फॉर्म भरा और कैसे आप इसके

0: चयनित हुए?
1: सर, मेरी बचपन से ही विज्ञान में बहुत अच्छी रुचि थी और मैं विज्ञान को एक ऐसा विषय मानता था जो कि पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। उसी के चलते मैंने इस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में अपना नाम दिया और मुझे इसके बारे में मेरे स्कूल के शिक्षकों से पता चला और उन्होंने बताया कि ये ऐसा एक कार्यक्रम होता है जिसमें आप सभी को अपना फॉर्म भरना होता है। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और फिर उसके बाद सिलेक्शन रिजल्ट आया और फिर पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है।
0: अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि आपके स्कूल के शिक्षकों ने आपको बताया कि आपको इसके लिए फॉर्म भरना है और आपको इसके लिए तैयारी करनी है, तो जब आपने फॉर्म भरा तो आपके साथ कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और इस प्रतिस्पर्धा में आप कैसे आगे निकल गए?
1: सर देखिए, युविका में अगर आपको सिलेक्ट होना रहता है तो उसके लिए ये रहता है कि क्लास 8 का 50% वेटेज लेते हैं रिपोर्ट कार्ड का, और अगर स्कूल यदि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो 15% वहां से मिलते हैं, 5% स्काउट गाइड से, 5% स्पोर्ट्स से, और 10% ओलंपियाड से, और 5% साइंस फेयर, और 10% एक ऑनलाइन क्विज होता है उसका वेटेज होता है। तो मेरे स्कूल से मेरे 8 और अन्य साथियों ने भी इसके लिए अप्लाई किया था, परंतु उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरा बना और ये जितने भी लोगों का सबसे ज्यादा परसेंटेज बना उन लोगों को इसरो युविका के लिए चुना गया।
0: बहुत बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आपने जो तैयारियां थी वो पहले से ही कर रखी थी, यानी कि जब आपको
1: सर
0: पता नहीं था कि आप इसरो के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उसके पहले ही आपने अपनी गतिविधियां जारी रखी थी। तो अभिषेक, क्या बनना चाहते थे जो आपने इतनी सारी गतिविधियों में खुद को जोड़े रखा?
1: मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि मुझे दूसरों की जान बचाना बहुत पसंद है। मुझे दूसरों की जान बचाना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य समझता था इसलिए।
0: बहुत बहुत बढ़िया, और वैज्ञानिक भी तो लोगों की जान बचाते हैं, दुनिया में प्रगति लाने का कार्य करते हैं। तो अभिषेक, आपने ये जो तैयारियां की, जैसा कि आपने बताया पहले कि शिक्षकों ने आपको बताया, इसके अलावा जब आपका चयन हो गया तो आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर और कौन-कौन सी गतिविधियों को आगे बढ़ाया?
1: सर मैंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हमें वहाँ बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी, जैसे कि हमारा वहाँ डेली क्लासेस चलती थी जिसमें अधिकतर स्पेस, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता था, और हमें बहुत सारे जगह घुमाने भी ले गए थे। जैसे कि हमें चेन्नई के साइंस सेंटर विजिट के लिए ले गए थे, और हम इंडिया का लॉन्च पैड देखे जहाँ से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, और हम एमसीसी देखे, मिशन कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर से सारे रॉकेट्स और जितने भी चीजें हैं वो सब कंट्रोल होती है, और हम सेकेंड लॉन्च पैड जो कि अभी बन रहा है उसे भी देखने गए थे, और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की थी। जैसे कि हमने एक रॉकेट बनाया था और उसको लॉन्च भी किया था, और हमने जो रॉकेट से उतरता है जो रोवर उसे भी बनाया था, और बहुत सारी चीजें सीखी थी और बहुत सारी याद भी बनाई।
0: इतनी अच्छी बातें आपने बताई कि आपने वहां रहते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीजों की जानकारियां हासिल की, रॉकेट भी बनाया और उसे लॉन्च भी किया, है ना? तो आप
1: जी सर।
0: बताइए, वहां कुछ नए दोस्त बने?
1: हाँ सर, वहाँ हम लोग 57 लोग थे तो उसमें से मैंने सभी को अपना दोस्त बनाया। बहुत सारे लोग मेरे वहाँ दोस्त बने, मैं उनके साथ वहाँ 12 दिन रहा, और 12 दिन ऐसे लगा कि वो 2 मिनट के जैसे निकल गया, इतना मजा आया था वहाँ।
0: अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि आपने वहां लंबा वक्त गुजारा, बहुत सारी चीजें सीखी और नए दोस्त भी बनाए, अब आपने जीवन में एक लक्ष्य तो हासिल कर लिया है। अब आपको पता है कि आपको विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, तो आप अपनी इस
1: जी
0: उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहते हैं सबसे ज्यादा? किसने आपकी सबसे
1: सर।
0: अधिक मदद की और इसका श्रेय किसे जाता है?
1: सर मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ जिन्होंने हर एक जगह मेरी मदद की और कभी ऐसा नहीं कहा कि इसके लिए मत करो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही कहा। और मैं श्रेय अपने समस्त शिक्षकों को देना चाहता हूँ, खास करके

0: मेरे विज्ञान के शिक्षकों को और मेरे स्कूल के प्राचार्य को, जिन्होंने मुझे इस मौके में भरने के लिए बोला और जिससे कि मैं इसरो युविका में मेरा चयन हुआ।
1: सही बात है, माता पिता की सीख से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है, और सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता की प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात और बताइए, क्योंकि अब आप विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, तो आप ऐसे किस वैज्ञानिक की तरह बनना चाहते हैं, ऐसे किसी वैज्ञानिक का आप नाम जानते हैं जिसको आप आदर्श मानते हैं और बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं?
0: जी सर, मैं डॉक्टर सुभांशु शुक्ला के जैसा बनना चाहता हूं। मैं उनके जैसा स्पेस में व्योमोनॉट बनना चाहता हूं और स्पेस की अनंत गहराइयों को खोजना चाहता हूं।
1: यानी आप अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष की गहराइयों को समझना चाहते हैं और देश और दुनिया के लिए कुछ नई जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं?
0: जी सर।
1: आप अपने जैसे दूसरे बच्चों से क्या कहेंगे? बच्चों के लिए आपका और क्या संदेश है जो बिल्कुल आप ही की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं?
0: सर, मैं दूसरे बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो कहाँ होगा, इतने सारे बच्चे भर रहे हैं इसके लिए, पर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, मतलब नेवर गिव अप। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा है तो वो उससे काम नहीं चलेगा, बस उसे स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना होगा, साइंस एग्जीबिशन में भी और भी बहुत सारी चीजों में, और उसे अपने आप को हर एक चीजों में बैलेंस करके रखना होगा।
1: बहुत काम की बात बोली आपने। वाकई में हमें बहुत सारी गतिविधियों से जोड़ के खुद को रखना होगा, सभी चीजों को सीखना होगा, ये हमारे जीवन में काम आती हैं। चलिए एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अब क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप युविका के लिए चयनित हो चुके हैं, जब वापस घर लौटे तो बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा मिलके आपको?
0: सर, मुझे बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस हुआ। जैसे ही मैं घर आया और जैसे ही मैं उनसे मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा था और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आनंद महसूस हुआ।
1: हमसे बात करने के लिए अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको बधाई और आने वाले भविष्य के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और विज्ञान के क्षेत्र में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित कीजिए।
0: जी सर, आपने भी मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया आकाशवाणी के रेडियो में, उसके लिए भी मैं आपका साभार धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी लोगों ने मेरी सहायता की इसके लिए मैं उनका भी इस हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद सर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद।
2: बच्चों, अभी आपने सुनी क्रम नव अंकुर में युविका के लिए चयनित अभिषेक खरे से बातचीत, जाने उनके अनुभव। उम्मीद है आपने भी कुछ सीखा होगा, आपको भी प्रेरणा मिली होगी। आइए आप सुनते हैं अगला क्रम बच्चों के मुख से।
3: मेरा नाम यमन यादव है, मैं शासकीय प्राथमिक शाला सकरी कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं छोटा सा गीत बोलना चाहता हूँ। गीत का बोल है, गुरुजन तुझे वंदन।

मुझे बनाया, मैं जब से पढ़ने आया, मिला ज्ञान किसी तल छाया, कभी दुलारा सहलाया, कभी डंडे की मार भी खाया, मेरे सर पे हाथ रख कर मुझे ज्ञान की अमृत पिलाया। हे गुरुजन तुझे वंदन, इस लायक मुझे बनाया, मैं उठा कर सर चल पाऊँ, इस लायक तुमने किया है, कहीं मात न खाऊँ मैं, मुझे इतना ज्ञान दिया है, मुझे प्रेम की रीत बताई, मुझे कर्म ही धर्म सिखाया। हे गुरुजन तुझे वंदन, इस लायक मुझे

0: जय हिंद जय भारत।
1: मेरा नाम मयंक साहू है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला सकरी है। मैं आपके सामने कहानी सुनाना चाहता हूँ, चूहा और शेर की कहानी। एक चूहा और एक शेर रहता था। चूहा मस्ती में खेलते खेलते शेर के सिर में बैठ गया और कूदने लगा। तभी शेर जाग गया। शेर ने चूहे को दबोच लिया। चूहे ने बहुत विनती की, तब भी शेर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में चूहे ने उसे बहुत विनती कर छुड़ा लिया। चूहे ने कहा, मैं तुम्हारा एक दिन कर चुकाऊंगा। उसके बाद कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए और शेर को पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी चूहे ने देखा कि ये तो वही शेर है जो इसने मेरी जान को छोड़ा था। तभी वो जल्दी से जाकर उस जाल को काट कर शेर को आजाद कर देता है।
2: मेरा नाम पुमांशी साहू है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ शासकीय प्राथमिक शाला सकरी में। आज मैं इस आकाशवाणी के माध्यम से आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज का समय हमें हमारी धरती माता की रक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक होने का समय है। पर्यावरण हमारा आधार है। हवा, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी मिलकर हमारी धरती को सुंदर और जीवंत बनाते हैं। लेकिन आज हमारा पर्यावरण खतरे में है। प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन ने हमारी धरती को कमजोर बना दिया है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारी हवा जहरीली हो जाए, पानी सूख जाए और पेड़ खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि यह न केवल हमारा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य भी है। हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हर एक पेड़ जो हम लगाते हैं वह न केवल हवा को शुद्ध करता है बल्कि धरती को ठंडा रखने में भी मदद करता है। यह हमारी धरती हमसे कुछ मांगती नहीं है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना होगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ, हरा भरा और सुरक्षित रखेंगे। पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे, पानी बचाएंगे और प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे। हरे भरे पेड़ लगाओ, धरती को स्वच्छ बनाओ। जय हिंद।
3: मेरा नाम यास्मीन यादव है, मैं कक्षा सातवीं से हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्च माध्यमिक शाला सकरी है। बेड़ियों को, चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं।

मेरी हाथ है। विश्व के उजाले में हूँ, देश का चिराग मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, गर्व उस पे करती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। मेरी हो या सायना, मिथाली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर है कम कहाँ मेरी हुनर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश ऐसे खेलती हूँ खेल भी, परवाह

0: हूँ मैं ना, अब है मुड़ के देखना, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: मेरा नाम नितिशा साहू है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला सकरी है। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। कठिन परिश्रम, लगन और शिक्षा के बल पर वे भारत के महान वैज्ञानिक बने और बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम बच्चों से प्रेम करते थे। वे मानते थे कि आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, इसलिए वे जहां भी जाते बच्चों और युवाओं से अवसर मिलते थे। बच्चों के बीच रहना, उनकी जिज्ञासा का समाधान करना और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर कलाम का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, सपने देखो, सपने ही विचार को हमेशा लक्ष्य निर्धारित करने और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते थे।
2: अब प्रस्तुत है शासकीय प्राथमिक शाला सकरी के बच्चों का समूह गान।

बाल कलाकारों की प्रस्तुति आपने सुनी क्रम बच्चों के मुखसे में। आइए अब आपकी पसंद का यानी बच्चों की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

तो बच्चों, अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानिए, उसे खोलिए, आगे बढ़िए, सीखते जाइए, खूब मुस्कुराइए, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हमारी दुआ। आज के किस्से में इतना ही, दीजिए आपके धीरेंद्र भैया को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम किसले अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिए छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के रायपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला से भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है रमाशंकर।

श्रोता नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता, हमारे छत्तीसगढ़ में भी तैराकी का काफी स्कोप अभी देखने को मिल रहा है। श्रोता, हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, जिनका काफी नाम हुआ और कई खिलाड़ी यहाँ पे शामिल हुए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

0: काफी ख्याति मिली है। तो श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में तैराकी खेल का क्या महत्व है और तैराकी में भी कैसे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और तैराकी के कैसा स्कोप छत्तीसगढ़ में है, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला जी को, जो छत्तीसगढ़ तैराकी संघ में रायपुर के जिलाध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर मनीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो मनीष जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में तैराकी का कैसा माहौल है?
1: अभी विगत वर्षों से, जब से इंटरनेशनल स्विमिंग पूल रायपुर में स्थापित हुआ है, तब से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिल रही है। बच्चे हमारे स्किल्ड हो रहे हैं, उनको अब जो टेक्निकल ज्ञान मिलना चाहिए खेल संबंधित, तैराकी संबंधित, तो उससे वो काफी आगे बढ़ने के उनके चांस रहते हैं और वो खेल में अपनी विधा को और अच्छे से आगे ले आने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर मनीष जी, हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चे कई तैयार हैं अभी खेलने के लिए, तो अभी छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं क्या जिसमें बच्चों को शामिल होने का अवसर मिल रहा
1: है? जी हाँ, अभी वर्तमान में 7 जून को वरिष्ठ ओपन का पुरुष और महिला का तैराकी का स्पर्धा हुआ था, जिसमें लगभग 35 बच्चों ने पूरे राज्य से भाग लिया था, अलग अलग जिलों से, और जो कि 16 से 21 तक अहमदाबाद में आयोजित नेशनल ओपन स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेंगे, और उसमें हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं और काफी बच्चों ने जो है एक राज्य स्तर में और नेशनल स्तर के हिसाब से रिकॉर्ड को क्वालिफाई किया है, जिसके लिए उनका चयन हुआ है, जिसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिला हैं, और बस ये है कि अभी उनको हम लोग जब कोचिंग देंगे तो उनके और बारीकियों से उनके कमियों को अवगत कराते हुए उनकी तैयारी करेंगे और हमें पूरी आशा है कि वो राज्य का नाम रोशन करेंगे।
0: जी जी, तो मनीष कुमार जी, हमने देखा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इवेंट हुआ है, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम्स हुए थे, यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। यहाँ कई, जैसे हमारे बिलासपुर से देखा जाए तो अनुष्का भगत, और यहाँ हमारे रायपुर से देखा जाए तो कई बच्चों ने भाग लिया। तो आप बताए कि आप हमारे छत्तीसगढ़ तैराकी संघ से कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया और कितने मेडल आए?
1: जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहा कि ट्राइबल गेम्स हुआ था, ऑल इंडिया ट्राइबल गेम्स रायपुर में आयोजित की गई थी, जिससे हमारा जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है उसका विकास भी हुआ और हमारे यहाँ के बच्चों को एक कंपटीशन देखने का भी मौका मिला और भाग लेने का भी मौका मिला। जैसे अनुष्का भगत ने और निखिल खलको, ये दो लोगों ने इस पे पदक प्राप्त किया था, निखिल खलको और अनुष्का भगत ने। जैसे अनुष्का भगत ने 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट में सिल्वर किया था, नयास पेकरा 100 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की थी। तो इससे, ऐसी खेल आयोजनों से हमारे जो उभरते हुए बच्चे हैं उनको इन आयोजनों में कितना कंपटीशन है लोगों के, अभ्यार्थी खिलाड़ियों के बीच में, ये उनको देखने मिलता है, साथ ही उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। और ये 4 बच्चों ने भाग लिया था ट्राइबल गेम्स में, जिसमें 3 बच्चों ने पदक भी प्राप्त किए।
0: तो मनीष कुमार जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ तैराकी संघ में रायपुर के जिला अध्यक्ष हैं, तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित रायपुर में जो तैराकी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कैसी हैं, और अगर और सुविधाओं की दरकार है तो वो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए?
1: सर, सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्विमिंग पूल तो है लेकिन वो पूर्ण रूप से व्यावसायिक है।
0: अच्छा।
1: और हमारे जो प्रतिभागी बच्चे होते हैं उनको प्रतियोगिता में तैयार करने के लिए हमें बराबर ट्रैक नहीं मिलता है
0: जी,
1: और एक कोने में सीमट के छोटी सी जगह में अपनी अभ्यास को जारी रखते हैं। वर्तमान में नया रायपुर और रायपुर में एक और इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाना चाहिए, और साथ ही NIS कोच जो हमारे छत्तीसगढ़ से करके आए हैं, जिसमें प्रमोद फड़ीकर है और 3-4 लोग और हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे बच्चे को और तकनीकी रूप से और स्किल्ड बना दें, क्योंकि हम थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस के ऊपर और थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान के ऊपर।
0: जी जी जी,
1: तो इसीलिए शासन से भी निवेदन है कि इनका व्यवसायीकरण रोक के ये सारे जो पुल्स हैं ये खिलाड़ियों को प्रदान करें ताकि वो अच्छे से नाम रोशन कर सके।
0: जी जी, तो मनीष शुक्ला जी, अभी जैसे हाल ही में हम देखें कि आने वाले समय में कोई इवेंट हमारे छत्तीसगढ़ होने वाले हो राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं और, तो क्या अपने यहाँ से ऐसे बच्चे तैयार है कि ऐसे इवेंट्स में जाए और वहाँ मेडल जीतने के लिए वो, उनकी जो तैराकी संघ के द्वारा की गई तैयारियाँ काफ़ी हैं?

0: क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, खास करके टेक्निकल ऑफिसर्सों की, जो उनकी बारीकियों को और अच्छे से अवगत करा सके।
1: जी जी,
0: हमें अभी इसमें जुलाई में हम लोग राज्य स्तरीय ओपन कंपटीशन करवाएंगे, जिसमें जूनियर सब जूनियर बच्चों को किए जाएंगे। हम लोग अपने स्तर में ब्लॉक स्तर से बच्चों को लेते हैं, फिर उनको जिला में लाते हैं, जिले में फिर उनको अभ्यास करा के फिर हम राज्य की ओर भेजते हैं। और रायपुर जिला लगातार 5 साल से ओवरऑल चैंपियन रहा है राज्य स्तरीय में, और इसमें से बच्चे सीबीएसई में भी जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड खेलने जाते हैं, और साथ ही स्टेट लेवल एसजीएफआई खेलने जाते हैं। इन बच्चों का अचीवमेंट अच्छा होता है, लेकिन जो इनको मेडल मिलना चाहिए उससे ये कुछ न कुछ सेकंड से रुक जाते हैं। हमारा तकनीकी कारण के कारण जो हम पिछड़ रहे हैं, इनको और स्ट्रांग बनाया जाए ताकि हम इनको गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल तक पहुंचा सके।
1: जी मनीष कुमार शुक्ला जी, ये जो तैराकी का खेल होता है ये काफी इंटरेस्टिंग खेल होता है। जब यहाँ पे हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी का जो पूल है रायपुर में, वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं इसके जो तैराकी के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए?
0: सर, मुख्यतः 4 विधाएं होती है हमारी, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इन चारों में 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर होता है, और फिर 500 मीटर 800 मीटर और 1500 मीटर होते हैं। इन के लिए आपको बच्चे के में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना होता है। ये चारों अगर इनमें डेवलप हो गया तो कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन में भाग लेता है तो वो आगे ही बढ़ेगा।
1: जी जी,
0: चूँकि यहाँ पर हमें टाइम का पूरा टाइम मिलता नहीं है, इंटरनेशनल स्कूल स्विमिंग पूल हमारे स्टैंडर्ड का तो है, लेकिन उन बच्चों को वो स्टैंडर्ड ड्राइव करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए कंटिन्यू आधा घंटे तक वर्कआउट करने के लिए ये जगह हमें नहीं मिल पाती है, और हम एक कोने में वहाँ पर सिमट के एक छोटे से एरिया में हम अभ्यास देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं कि आगे कॉम्पिटिशन के लिए बच्चा जब उनको फाइनल प्रैक्टिस दिया जाए तो वो संभव नहीं होता है।
1: जी,
0: और चूंकि बच्चे बहुत यहाँ पर स्विमिंग के प्रति जागरूक हैं, उनके पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, और सभी की यही इच्छा है कि ये जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है ये और जो सुविधाएं हैं छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए।
1: जी,
0: छत्तीसगढ़ में तैराकी के बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चे भी मिलते हैं हमको, हमारे गाँव से भी बच्चे उभरते हुए हैं, लेकिन हम उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, हम जैसे कि आपने बताया कि तैराकी में 4 प्रतिस्पर्धाएं खेली जाती हैं, जिसमें बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, तो इन चारों में क्या फर्क होता है?
0: सर देखिए, जो फ्री स्टाइल है उसमें आपके बॉडी के पूरे मूवमेंट्स होंगे, आप जो जनरल एक तैराकी बच्चा करता है उसमें वो भाग ले सकता है, लेकिन बैक स्ट्रोक में आपका क्या होगा, आप पैर के द्वारा पानी को बाहर पीछे की ओर फेंकेंगे और हाथ से आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे।
1: जी जी।
0: तीसरा होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक में, आप दोनों हाथों से ही आपका पैर नीचे आप पंप करेंगे और दोनों हाथों से आप ऊपर उसको करेंगे। बटरफ्लाई जैसे उड़ती है उसी से अप डाउन करके बॉडी को हम लोग आगे की ओर धकेलते हैं।
1: जी।
0: आपको सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये एक ऐसा चीज है कि जहां पर हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, बाकी दिन भर की गतिविधियों में हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं।
1: जी।
0: तो ये आप ये समझिए कि ये आपके फेफड़े के लिए
1: जी
0: सबसे कारगर एक्सरसाइज माना जाएगा, कि आप आधा 45 मिनट या 1 घंटा आपने अपने फेफड़े को उल्टे दिशा में एक कार्य करवाया, जिससे आपको आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी।
1: जी।
0: और इससे अगर जहां स्टेमिना आपकी बढ़ेगी तो आपकी लंग्स कैपेसिटी के साथ साथ आपका हार्ट कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इसलिए स्विमिंग में जो ये चारों विधाएं रखाई गई हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है और आप बहुत बढ़िया आप अपने स्वस्थ रह सकते हैं लाइफ टाइम, आपका बॉडी भी जो होता है वो टोन हो जाएगा एक।
1: जी जी जी जी। तो डॉक्टर मनीष जी, जब तैराकी की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रतिभाएं जो होती हैं वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी हैं, और इन प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अभी आप देखते हैं कि और कितनी इसमें मेहनत की जानी चाहिए?
0: निसंदेह सर, हमारा पूरा संघ जो है, हमारे अध्यक्ष माननीय बृजोहन अग्रवाल जी हैं और जाखड़ जी, साईराम जाखड़ जी हमारे छत्तीसगढ़ के सचिव जी हैं, तो इन लोग ने बहुत अथक प्रयास करके अभी भिलाई और दुर्ग में स्विमिंग पूल के लिए स्वीकृति दिलवाई है।
1: जी।

0: और बच्चों को समय समय पर अब कोचिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी अभी बात चल रही है। साथ ही अच्छे कोच हायर करके उनको और अच्छे से स्किल्ड बनाने की प्रयास है। साथ ही जो गार्ड होते हैं अपने जो कोस्ट गार्ड के रूप में वहाँ पर पूल में मौजूद होते हैं, उनके लिए समय समय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिससे उनको और अच्छे से सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बच्चों को बचाया जा सके
1: जी,
0: कहीं
1: जी,
0: पर कोई दुर्घटना होती है तो।
1: जी जी जी तो मनीष जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी खेल में लड़कियों बालिकाओं की भागीदारी कितनी आवश्यक होती है।
0: आज के समय में जो हमारी छात्राएं हैं, इनको खेल में बहुत ही इनके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज को बहुत ही गंभीर रूप से और पूरी आत्मीयता के साथ ये कोई काम को करते हैं। इनमें जो सिंसियरिटी पाई जाती, छात्राओं में जो सिंसियरिटी पाई जाती है, वो समझ लीजिए कि 100% क्षमता के साथ 100% रिजल्ट देने की क्षमता होती है।
1: जी जी।
0: और यही उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो

0: और अच्छे से सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बच्चों को बचाया जा सके
1: जी,
0: कहीं पर कोई दुर्घटना होती है तो।
1: जी जी जी, तो मनीष जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी खेल में लड़कियों बालिकाओं की भागीदारी कितनी आवश्यक होती है।
0: आज के समय में जो हमारी छात्राएं हैं, इनको खेल में बहुत ही इनके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज को बहुत ही गंभीर रूप से और पूरी आत्मीयता के साथ ये कोई काम को करते हैं। इनमें जो सिंसियरिटी पाई जाती, छात्राओं में जो सिंसियरिटी पाई जाती है, वो समझ लीजिए कि 100% क्षमता के साथ 100% रिजल्ट देने की क्षमता होती है।
1: जी जी,
0: और यही उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो छात्राओं का बहुत अच्छा भविष्य है हमारे यहाँ की, छत्तीसगढ़ की आपने बताया भगत जी हैं, और हमारे रायपुर से भी 4-5 लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छा अभी ICSE में, CBSE बोर्ड में, स्टेट में बोर्ड की थी, जिसमें कि सगुन सिंह है और आपका वेदा राव सिंधे है, और रायपुर खेल से जो बॉयज़ में भी उपलब्धियां हमारे अच्छी रही है, जिसमें कि आपका आनंद द्विवेदी है, उपराज सिंह है, और साथ में ही सोना दास, इन लोगों ने एक अच्छा भी प्लेटफॉर्म मिला है इनको, तो ये आगे बढ़ने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: और इनको तकनीकी रूप से हम लोग सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला जी से, जो कि छत्तीसगढ़ तैराकी संघ में रायपुर के जिलाध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, खेल संसार कार्यक्रम में आप आए और तैराकी स्विमिंग के खेल के संबंध में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।
1: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम खेल संसार अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत के एस चित्रा और साथियों के स्वर में, नगमा निगार गुलजार, मौसिकार अनु मलिक, फिल्म है अशोका।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने गुलाम फिल्म का गीत, आवाजें अलका याज्ञिक और कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और

0: पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की। गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन। फिल्म है ये दिल लगी।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान और सोनू निगम को, गीतकार प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित और फिल्म है फना।

सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत जतिन ललित का था, फिल्म का नाम था फना। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10 बजे भी सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं आत्माराम कोसा और साथी।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में

0: जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए महादेव हिरवानी के स्वर में ये गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे आत्माराम कोसा, माया वैद्य, महादेव हिरवानी और साथी। तबले पर भागवत सिन्हा, ढोलक पर दिनेश साहू और बांसुरी पर संगत की थी भूषण नेताम ने। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के जरिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्वभर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भाग

भागीदारी की गई। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में NHM कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर NHM कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नवागढ़ विकास खंड के ग्राम पोड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सत्य निज सत्संग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। यहां पारंपरिक, उन्नत और हाइब्रिड किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र रहे। सांसद महेश कश्यप ने प्राकृतिक रूप से तैयार आमों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जैविक खेती और आम से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की जानकारी भी दी गई। नया रायपुर के सिंध लेक में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर एवं सब जूनियर प्रतियोगिता के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। सब जूनियर बालक वर्ग के C2 500 मीटर में दीपक और लक्ष्य की जोड़ी ने, जबकि C4 500 मीटर में सैमसंग तोरण साहू, गणेश साहू और लाइसिम्बा की टीम ने स्वर्ण हासिल किया। प्रतियोगिता में 24 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सक्ती जिले के मालखरौदा के छापोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले भी मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब पीने से 4 महीने के भीतर 8 ग्रामीणों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मामले की जांच के लिए कसडोल थाने का घेराव भी किया था। ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए शनिवार को पुलिस और राजस्व अफसरों की मौजूदगी में शव को कब्र से खोदकर निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया और जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। चित्रपट संगीत।

सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाज़ों में संतोष आनंद की रचना भी आपने सुनी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म का नाम था प्रेम रोग। आइए अब सुने किशोर कुमार के स्वर में अमित खन्ना का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म है और कौन।

से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुने निकाह फिल्म का गीत, आवाज सलमा आगा की, नगमा निगार हसन कमाल, मौसिकार हैं रवि।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुनिए लहू के दो रंग फिल्म का गीत। गीतकार फारूक कैसर, संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। बोल गुलजार के धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है गुलामी।

0: गुलाम फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। एक बस्ती एक मौत, लीजिए सुनिए ये नाटक। लेखक श्री जयनंदन और निर्देशक हैं श्री शाहिद अनवर।
1: प्रस्तुत है नाटक एक बस्ती एक मौत। इसे लिखा है जयनंदन ने, निर्देशक हैं शाहिद अनवर और प्रस्तुतकर्ता पंकज मित्र। एक बस्ती एक मौत।

रैना, जब भी मैं इस गौरा घाट पर आया हूँ, किसी न किसी मृत व्यक्ति के अंतिम क्रियाक्रम में भाग लेने आया हूँ। जलती हुई चिता की जगह खुद को मैंने कई बार रखकर देखा है। हर बार मुझे लगा है कि हो सकता है अगली बार

0: मैं किसी को जलाने नहीं, खुद जलने आऊं। हैरत है कि मैं इस घाट पर आज पहली बार न किसी को जलाने आया हूं, न खुद जलने, बल्कि जीने आ गया हूं।
1: ये मेरी खुशनसीबी है श्वेत कि तुमने इस शमशान बस्ती की एक लड़की को अपने जीवन में शामिल करने की कृपा दिखाई, वरना ये बस्ती और यहाँ के लोग जिस तरह घिन की निगाह से देखे जाते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था।
0: चलो चलो उस तरफ नदी के छोर पर चलते हैं, जहाँ गौराघाट की लंबी चौड़ी शमशान भूमि फैली हुई है। आओ आओ चले। हाँ
1: देखो, नदी इस समय लगभग सूखी है, बस एक पतली सी सर्पाकार धारा यूं दिखाई पड़ रही है जैसे किसी बच्चे के मुंह से लार रिस रही हो। पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाज में विश्वास करने वाले कुछ लोग आज भी मूर्ति की चिता देखो यही नीचे बालू पर लाकर सजाते हैं।
0: अब जब बिजली का सौदा गृह बन गया है, फिर भी लोग पर्यावरण का ख्याल नहीं करते।
1: उधर देखो, बालू पर एक मुर्दा चल रहा है।
0: हाँ।
1: और दूसरी के लिए तैयारी चल रही है।
0: हाँ।
1: बस्ती के कुछ लोग लकड़ियाँ ला रहे हैं और चिता की जगह बनाने के लिए कुदाल से बालू को हटा रहे हैं।
0: उनके बगल में बहुत सारे कपड़े क्यों पड़े हैं रहना?
1: हाँ, मृतक के परिजनों ने उन कपड़ों को छूत और अपशगुन समझकर फेंक दिए हैं। शायद वे किसी रईस घराने से हैं।
0: ये लो, बस्ती के कई बच्चे बूढ़े जवान इन कपड़ों को लेने भी पहुंच गए जिसे छूत और अपशगुन समझकर फेंक दिया गया। वे कपड़े क्या इन गरीबों के लिबास बन जाएंगे?
1: हाँ, जब मैं छोटी थी तो इन कपड़ों पर गिरफ्त बनाने की होड़ में मैं भी शामिल हो जाया करती थी। इन उतरनों को पहनने का दुर्भाग्य मैंने भी झेला है श्वेत। पैरों में कुष्ठ लेकर बाबा जब गांव से भागकर आए थे तो इस कोड़िया बस्ती में पनाह लेकर वे भी बहुत लावारिस हाल थे। हमारी हालत तो तब सुधरी है जब विद्युत सौदा गृह बन गया और बाबा इसमें कारपोरेशन की ओर से नौकर बहाल हो गए।
0: तुम्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता रहना कि तुम इस बस्ती की रहने वाली हो। हैरत है कि यहाँ के खूब अंधेरे में रहकर भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पढ़ाई की रोशनी में भेजने का जुनून पाला।
1: इसके लिए बाबा को बहुत विरोध और प्रहार सहना पड़ा है। इस बस्ती के स्वयंभू आका नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ तालीम की कोई किरण आए। छुपाकर भगाकर वे मुझे स्कूल छोड़ाते थे। अगर मैं पढ़ लिख कर तुम जैसे बुद्धिजीवियों की जमात में शामिल नहीं हो गई होती तो अब तक जरूर किसी सफेद पोश अय्याश का निवाला बन गई होती।
0: हे भगवान, ये तो पूरी तरह रूढ़िवादी रवैया है।
1: हाँ, आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। जिस्मखोर कित्तों और कुत्तों की निगाहें छेद जाती हैं मुझे। इनसे बचने के लिए हमें काफी ऊर्जा खर्चनी पड़ती है, समझौते करने होते हैं। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इस बस्ती से मुझे निकाल ले चलो। आज रात भर के लिए तुम्हें बुलाने के पीछे यही मतलब है कि वे तुम्हें समझेंगे और अपनी समझाएंगे।
0: मैंने अपनी माँ को समझा लिया है रहना, उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। बाबूजी भी मान गए हैं। इस बस्ती के नाम से जो भ्रांतियाँ और दुराग्रह के कोहरे हैं उनके मन में, जिनमें काफी कुछ सच भी है, छट जाएंगे एक दिन। तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए मैं खुद भी बहुत बेताब हूँ। तुम जब तक यहाँ हो मैं निश्चिंत और स्वस्थ नहीं हो रहा ना।
1: नर्क से भी कोई बदतर जगह हो तो इस बस्ती के लिए वो नाम दूषित। देख रहे हो यहाँ की झोपड़ियाँ किस तरह उबड़ खाबड़ और ऊंच नीच जमीन पर आड़ी तिरछी बनी है, जैसे अब गिरी कि तब। जबकि लोग घर बनाते हैं तो सख्त और मजबूत नींव डालते हैं। लोग बाग शमशान के नाम से घबराते हैं, मूर्ति भूत से डरते हैं। और यहाँ मुर्दे, अर्थियां और चिताओं में ही इनके नसीब हैं।
0: जानता हूँ रहना,

0: मैंने कई बार महसूस किया है कि यहां मृत लाशें ही नहीं जिंदा लाशें भी जला करती हैं, और ये जिंदा लाशें हैं इस बस्ती के लोग। एक सुसंपन्न, सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित औद्योगिक नगर के साये में होकर भी इनके मानचित्र पर इस बस्ती का कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं।
1: इसे लोगों ने कोड़िया बस्ती नाम दे रखा है। यहाँ न पानी है, न बिजली, न स्कूल, न राशन, न डाकखाना, न कोई रोजगार, सिवा भीख मांगने और मुर्दों के जलने में सहयोग करने के।
0: जानता हूँ कि सरकार और प्रशासन के खाते से बेदखल ये बस्ती वोट का भी अधिकार नहीं रखती। पता नहीं क्यों इस बस्ती की त्रासदी और विटंबना देखकर मैं तुमसे और भी छूटता चला गया हूँ। रहना
1: वो देखो, जहाँ चिता जल रही है ठीक उसके एक पास की दूरी पर एक बुढ़िया एक हाथ गड्ढा खोदकर पीने का पानी घड़े में भर रही है।
0: हाँ।
1: जबकि शव यात्रा में आए लोग इस घाट पर पैर रखते ही अपने को अशुद्ध समझने लगते हैं और घर जाकर स्नान करने के बाद ही शुद्ध महसूस करते हैं।
0: देख रहा हूँ रैना, वहाँ पास में ही कुछ औरतें और बच्चे मिलकर झूड़ी में कोयला बिन रहे हैं। ठंडी चिता से चुने हुए कोयले ही उनके खाना बनाने के ईंधन बन जाएंगे।
1: हाँ, इस बस्ती को तुम अब भी बहुत कम जानते हो श्वेत। एक गटर की तरह लगने वाली ये बस्ती और कीड़े मकोड़ों की तरह इसमें रहने वाले लोग खाद पानी है नगर में पलने बढ़ने वाली नाजायज तथा खतरनाक फसलों की।
0: रैना, सोचता हूँ कि तुम्हारी आँखों की मार्फत इस बस्ती के जर्रे जर्रे को अच्छी तरह समझकर एक विस्तृत शोध रिपोर्ट लिख दूँ अखबार में।
1: नहीं श्वेत, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुमनामी के अंधेरे से इसे निकालना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जानते हो, कुछ प्रभुत्व वाले दबंग आका हैं इसके पीछे, जो इसके नगण्य अस्तित्व से अपना विशाल कद बनाते हैं। यहां जिस्म फरोशी होती है, बड़ी बड़ी जघन्य और क्रूर हत्याओं और वारदातों की योजनाएं बनती हैं। बम बारूद और असलहों का यहाँ जखीरा जमा किया जाता है। गांजा, अफीम, चरस और कालाबाजारी की अन्य सामग्रियों का यहाँ अवैध स्टॉक रखा जाता है। शातिर हत्यारों और मुजरिमों के भूमिगत ठिकाने के रूप में इसका उपयोग होता है। इन जीर्ण शीर्ण झोपड़ियों के भीतर और इसके नीचे क्या क्या है तुम सोच भी नहीं सकते श्वेत।
0: तब तो हमें इसका पर्दाफाश जरूर ही करना चाहिए रैना। मैं एक रिपोर्टर हूँ और तुम एक रंगकर्मी हो। हम इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कौन सामने आएगा?
1: जिस लड़ाई का अंजाम सिर्फ पराजय हो और उसकी जानकारी हमें पहले से ही हो, उसे लड़ना एक आत्मघात से ज्यादा कुछ नहीं है श्वेत। तुम क्या समझते हो कि शहर के रहनुमाओं को, इसके सूबेदारों और कोतवालों को इसकी जानकारी नहीं है?
0: मैं कोई योद्धा नहीं हूँ रैना, लेकिन इतिहास में अनेक ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने एक मूल के तहत सिर्फ हारने और मरने के लिए संग्राम किया है। वे हारे और मरे भी, फिर भी उनकी वीरता एक शिलालेख बन गई।
1: बस बस बस, दर्शन की बातें बाद में। उस तरफ देखो, सूरज अस्ताचल की कोख में समा गया है।
0: हाँ, मैं देख रहा हूँ आसपास के पेड़ पौधे और उनकी शाखाओं पर स्थित बसेरे में लौटे पक्षी शायद सोच रहे हैं कि दिलों जहाँ से मोहब्बत करने वाले ये आशिक आपस में कैसे गुफ्तगु कर रहे हैं। न कस्में, न वादे, न समर्पण, न चुंबन, न स्पर्श। क्या इस तरह के रूखे सूखे, कठोर और नीरस संवाद प्रेमालाप के माध्यम हो सकते हैं?
1: फिर दर्शन, चलो चलो अब घर चलें। देखो, अपनी झोपड़ी के उसारे से खड़े होकर बाबा हाथ हिला रहे हैं। हम तो आ ही रहे थे बाबा। अच्छा, आप श्वेत से बातें कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ।
2: आओ आओ आओ बेटा, आओ, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं चाय बना देता हूँ। खाना बनाने की तैयारी भी करनी है ना
0: बाबा। ये काम आप

0: आप रैना का क्यों नहीं सौंपते?
1: अरे
0: लड़कियां लाख पढ़ी लिखी हो, रसोई तो उन्हें करनी ही होती है।
1: नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता बेटा कि अपनी आदत खराब कर लूं। कल या परसों तुम इसे लेकर चले जाओगे तब क्या होगा? इसकी माँ जब से गुजरी है ये काम मैं ही कर रहा हूँ बेटा।
0: आप धन्य हैं बाबा।
2: तुम्हारी कहने से बाबा मानने वाले नहीं हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें बाबा पर लिखी एक कविता सुनाती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो चलो सुनाओ, क्या लिखी हो कविता?
2: सुनो, बाबूजी शमशान हैं और शमशान एक तरह से बाबूजी हैं।
0: अच्छा,
2: बाबूजी शमशान हैं और शमशान एक तरह से बाबूजी हैं। दोनों एक दूसरे के पर्याय, दोनों एक दूसरे के पर्याय। रोज बाबूजी में चिंताएं जलती हैं, रोज बाबूजी में चिंताएं जलती हैं और रोज चिताओं में बाबूजी जलते हैं। डरावने अंधेरों की नीरवता में गुम, डरावने अंधेरों की नीरवता में गुम, डरावने अंधेरों की नीरवता में गुम, शमशान में यानी बाबूजी में अनगिनत कुत्ते और सियार गुहार मचाते हैं और कुत्ते तथा सियारों की आवाजों से शमशान की यानी बाबूजी की पहचान बनती है। इस तरह बाबूजी में शमशान है और शमशान में बाबूजी, और अब उनकी जगह कभी भी मुझे लेनी पड़ सकती है।
0: वाह वाह, बहुत खूब रहना, बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा तुमने रहना।

0: खाते पीते 11 बज जाएंगे। ये बस्ती में इतना रात तक कोई नहीं जगा रहता है।
1: हाँ, 11 बजे के बाद यहाँ सफेद पोशों की काली दुनिया सक्रिय हो जाती है। चलो खाना खाते हैं।
2: वाह बाबा, क्या लजीज और चटकदार बना दिया आपने।
0: हाँ बेटा।

0: जल्दी से अपने अपने बिस्तर पर पड़कर आंखें बंद कर लो। ऐसा लगना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। सोचा सोचा बंद कर लो।
1: जोशचंद, जोशचंद,
0: हाँ हाँ आया।
1: जोशचंद, सुनो, दो लाशें लाया हूँ, इन्हें जितना जल्दी हो सके जला डालना। मदद के लिए दो आदमी को यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। मैं आज जल्दी में हूँ, रुक नहीं पाऊंगा।
0: ठीक है, आप जाइए मुखा बाबू, काम हो जाएगा मुखा बाबू।
2: क्या बात है चौसर, तुम्हारे चेहरे के रंग ठीक नहीं है।
0: रंग रंग

0: डॉक्टर कोई है क्या?
1: नहीं,
0: जरा देखे तो अंदर।
2: अरे ये कौन सोया है?
1: हमरा होने वाला जमाई है मुखा बाबू, इसे हमारे धंधे से कोई मतलब नहीं है। अब बेफिकी रहिए मुखा बाबू।
0: जमाई अभी हुआ भी नहीं कि उसे भीतर सुला लिया चौसर।
1: मुखा बाबू
0: इसे अड़ोस पड़ोस के घर सुला देते तो क्या किसी की नजर लग जाती है?
1: नहीं मुखा बाबू, ऐसी बात नहीं है मुखा बाबू।
0: कर देखे तो तुम्हारे अजीज जमाई का चेहरा कैसा है?
1: चेहरा
0: तुम्हारी कॉलेज की पढ़ी नाटक वाली बेटी ने किस मुर्गे को फांसा है?
1: मुर्गा क्या बोल रहा
0: है? ये चादर से मुंह क्यों ढक लिया?
1: कुछ नहीं मुखा बाबू, सो गया है मुखा बाबू, सोने दीजिए मुखा बाबू।
0: ठीक है सो गया है तो ठीक है, जरा चादर हटा कर इसका मुंह तो देख ले।

0: तुम्हारी बेटी ने बहुत गलत आदमी का चुनाव कर लिया है चौसर चंद। ये अखबार का आदमी है, इसे मैं भी जानता हूँ। ये लोग क्लू के भूखे होते हैं, क्लू के भूखे होते हैं।
1: क्लू? क्लू?
0: कोई राज इनके जिगर में घुस जाए तो इन्हें बदहजमी हो जाती है, और ये खबरों की उल्टी कर बैठते हैं। जोसर चंद, इन लाशों पर उसकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए।
1: नहीं नहीं नहीं पड़ेगा मुखा बाबू, आप
0: बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए।
1: नहीं मुखा बाबू, नहीं, बेफिक्र रही मुखा
0: बाबू।
1: जी जी मुखा बाबू जी,
0: मेरे आदमी ने फर्नेस के पास लाशें रखवा दी हैं।
1: ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक,
0: मैं चलता हूँ।
1: हाँ मुखा बाबू, आप जाइए।
0: चलता हूँ।
1: हाँ हाँ मुखा बाबू, हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुखा बाबू,
2: ये बदतमीज कौन था?
3: ये मुखा सिंह था, शहर का खूंखार पेशेवर हत्यारा। लाशें लाकर वह राख में बदलवा देता है ताकि कोई शिनाख्त सबूत न रहे। बाबा और मृत्यु पंजीकरण क्लर्क को वह बदले में कभी 500 कभी 1000 रुपए पकड़ा देता है। पैसे अगर ये लोग न भी लेना चाहें, फिर भी उसके वहशियाना जोर जुल्म के इशारे पर चलने के लिए इन्हें मजबूर हो जाना पड़ता है।
2: अब समझ में आया मुझे। माल्टा स्टील मेल्टिंग कंपनी के दो मजदूर प्रतिनिधि के 2 दिनों से लापता होने की खबरें अखबारों में छप रही थी। पुलिस की निष्क्रियता को कोसा जा रहा था। ये दोनों प्रतिनिधि कंपनी के आधुनिकीकरण के कारण मजदूरों की हो रही छटनी का विरोध कर रहे थे। मैंने इनसे बातचीत करके इनके पक्ष में एक रिपोर्ट भी छपवाई है। निश्चित रूप से आज उनकी ही लाशें राख में बदलवा कर लापता के रहस्य को बेसुराख कर दिया जाएगा।
3: छोड़ो इन सब बातों को, चलो अब सो जाएं।
2: मुझे अब नींद कहाँ आने वाली है। नहीं, नहीं,
3: कोशिश करो, आ जाएगी।

0: चलता हूँ बाबा, इतनी डरावनी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: हाँ हाँ बेटा, हमारी तुम्हारी खैर इसी में है कि रात का कुछ हुआ उसे एकदम भूल जाना बेटा। का करूं बेटा,
0: कोशिश करूंगा कि भूल जाऊं।
1: हाँ बेटा हाँ।
2: शाम को वही मिलूंगी भारतेंदु भवन के वाचनालय में। हालांकि आज नाटक का रिहर्सल नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही वहां रहूंगी।

0: बिना नाश्ता किए घर से निकल रही हो? कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह?
1: मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बाबा।
0: पुलिस स्टेशन?
1: हाँ, पता है कल श्वेत वाचनालय नहीं आया। मैंने उसका ऑफिस जाकर देखा, वहाँ भी वह गैर हाजिर था। उसके घर गई तो माँ ने कहा कि कल सुबह नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकला तो वापस नहीं आया।
0: नहीं,
1: कभी कभी दफ्तर में उसे रुक जाना पड़ता है। उसके भोले भाले बाबूजी कहने लगे कि रहना बेटी, अब तुम लोगों को ज्यादा मैं नहीं धर पाऊंगा। अपने बाबा को कह देना जल्दी ही मुहूर्त निकलवाने वाला हूँ। क्या रात में भी कोई लाश लाई गई थी बाबा?
0: लाश? हाँ बेटा, मुखा सिंह फिर रात में एगो लाश लेके आया था, जिसका चेहरा को इस तरह विकृत कर दिया गया था कि पहचान में नहीं आए। बेटा,
1: अब मुखा सिंह के खेल का अंत करने का समय आ गया है बाबा। अब वो बच नहीं सकता। मैं एसपी ऑफिस जा रही हूँ।
0: एसपी ऑफिस?
1: उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मैं खोल कर रख दूंगी। अगर कल रात में लाई गई लाश श्वेत की थी, तब तो मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर दम लूंगी।
0: बेटा, बहुत डर लग रहा है बेटा हमका तो।
1: नहीं, अब डर को मन से निकाल दीजिए बाबा। अब हम न्याय के लिए जिएंगे
0: और बेटा,
1: और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे।
0: हाँ बेटा, हाँ रहना बेटी।

0: एक बस्ती एक मौत। अभी आप सुन रहे थे जयनंदन का लिखा ये नाटक। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। चौसर चंद, हीरेंद्र कुमार सिंह।
1: हाँ बेटा, हमारी तुम्हारी खैर इसी में है कि रात का कुछ हुआ उसे एकदम भूल जाना बेटा।
0: मुखा सिंह, गौतम शंकर दास।
2: जमाई अभी हुआ भी नहीं कि उसे भीतर सुला लिया चौसर।
1: मुखा बाबू,
2: इसी

0: अड़ोस पड़ोस के घर सुना देते तो क्या किसी की नजर लग जाती है?
1: श्वेत शाहिद अनवर।
2: मैंने इनसे बातचीत करके इनके पक्ष में एक रिपोर्ट भी छपवाई है। निश्चित रूप से आज उनकी ही लाशें राख में बदलवा कर लापता के राज को बेसुराख कर दिया जाएगा।
1: रैना पूनम श्रीवास्तव।
3: नर्क से भी कोई बदतर जगह हो तो इस बस्ती के लिए वो नाम दूषित। देख रहे हो यहाँ की झोपड़ियाँ किस तरह उबड़ खाबड़ और ऊंच नीच जमीन पर आड़ी तिरछी बनी है, जैसे अब गिरी कि तब।
1: नाटक एक बस्ती एक मौत के निर्देशक और संपादक शाहिद अनवर, प्रस्तुतकर्ता पंकज मित्र। ये नाटक आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र पर तैयार किया गया।
4: एक बस्ती एक मौत, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। लेखक श्री जयनंदन और निर्देशक थे श्री शाहिद अनवर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दिन के 11 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहर

0: शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है संजय पाठक।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को सप्ताह भर से इंतजार रहता है अपनी बातें करने का और अपने पसंद के गीत सुनने का। आइए देखते हैं हमारे किस श्रोता का फोन सबसे पहले आया है। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम सहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी बोल रहा हूँ सर।
0: सुखनंदन चंद्रवंशी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप
1: जी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ सर, किसानी काम।
0: अब तो बारिश के दिन आने वाले हैं, तो क्या तैयारी चल रही है?
1: हाँ सर, बारिश के तो अगोरा ही है। हम किसान को खेत वेत तो हम अपना साफ सफाई कर चुके हैं बुआई के लिए या रोपाई के लिए, तो बस पानी का ही इंतजार है।
0: अच्छा, खाद वगैरह की क्या स्थिति है?
1: खाद अपन गोबर खाद जो घर में रहता है सर, उसको भी डाल चुके हैं।
0: अच्छा,
1: और दुकान से व्यवस्था कर चुके हैं।
0: चलो अच्छी बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म गोपी का है सर, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना कौवा मोती खाएगा।
0: ठीक है, आपको

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश।
2: हेलो,
1: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप और कहां से बोल रहे हैं?
2: मैं राघवेंद्र सिंह बोल रहा था, रायपुर शहर से।
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत है राघवेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं तो एक नौकरी करता हूँ एक फॉर्म में, जहाँ पे पेशेंटों को मैं मधुमेह की जानकारी देता हूँ।
1: आजकल मधुमेह का प्रकोप बहुत अधिक है और ऐसे में इससे बचाव किस तरह से हो सकता है, किन किन उपायों को करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है?
2: मधुमेह के बचाव के लिए जरूरी है कि जो मरीज हो इस बीमारी के बारे में जाने। वैसे तो हम इसे बीमारी नहीं मानते हैं, इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मानते हैं। अगर मधुमेह के साथ जीना कोई इंसान सीख लेता है तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर कोई लापरवाही करता है इससे, इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, गैंग्रीन।

0: आंखों में इफेक्ट हो सकता है। तो बेहतर होगा कि मरीज पहले से ही इस बीमारी के बारे में जानकारी ले अपने डॉक्टरों से और उसका नियंत्रण रोजमर्रा के दिन में करता रहे। इस तरह से वो स्वस्थ जीवन जी सकता है और फिर मधुमेह बीमारी नहीं हो सकती किसी को, या आप बोल सकते हैं इसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है। आमतौर पे मधुमेह जो होता है अभी के वक्त में तो हम बोल सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज जो हमारे लाइफ में आई है वो है, जिसकी वजह से जिस तरह से हमारा खान पान हो गया है, रहन सहन हो गया, जिसकी वजह से काफी तेजी से मधुमेह बढ़ा है। बट कुछ केसेस में जहाँ टाइप 1 पेशेंट है जो अनुवांशिक भी हो सकता है, बट जो लार्ज स्केल पे हुआ है वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। एक्सरसाइज और खान पान ठीक रखें तो हम इस पे नियंत्रण रख सकते हैं।
1: आपका कहना है कि अनियंत्रित जीवन शैली इस तरह की परेशानियां सामने आ रही है।
0: जी हाँ।
1: इसके जांच के लिए भी कभी कभी हम देखते हैं कि कई मरीज अपने घर में भी ग्लूकोमीटर वगैरह रखते हैं, इसे तो वो कितना सही होता है या डॉक्टर के ही पास जाकर सलाह लेना उचित होता है?
0: नहीं, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो

0: तो हम बोल सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज कुछ हमारे लाइफ में आई है वो है, जिसकी वजह से जिस तरह से हमारा खान पान हो गया है, रहन सहन हो गया, जिसकी वजह से काफी तेजी से मधुमेह बढ़ा है। बट कुछ केसेस में जहाँ टाइप वन पेशेंट है जो अनुवांशिक भी हो सकता है, बट जो लार्ज स्केल पे हुआ है वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। एक्सरसाइज और खान पान ठीक रखें तो हम इस पे नियंत्रण रख सकते हैं।
1: आपका कहना है कि अनियंत्रित जीवन शैली इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: इसके जांच के लिए भी कभी कभी हम देखते हैं कि कई मरीज अपने घर में भी ग्लूकोमीटर वगैरह रखते हैं, इसे तो वो कितना सही होता है या डॉक्टर के ही पास जाकर सलाह लेना उचित होता है?
0: नहीं, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो पेशेंट्स या मरीज होते हैं जिनका शुगर जांच कराना चाहिए। अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आपको जांच कराना चाहिए। और या बार बार आपको पेशाब आ रही है, भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है, या कोई भी घाव बार बार ठीक नहीं हो रहा है आपका, तो आपको जांच जरूर कराना चाहिए। और जांच कराने के पास अपने डॉक्टर के सलाह से आपको डॉक्टर 2-3 टेस्ट करता है, हो सकता है आपको A1C कराए, जिसके आमतौर पर 7 के नीचे रहता है तो ठीक माना जाता है। HbA1c या ग्लूकोमीटर फास्टिंग और PP के साथ डॉक्टर डिसाइड करता है, उसके डाइट एंड एक्सरसाइज से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान को जांच करा लेना चाहिए 30 के बाद। देखिए, मधुमेह जो मरीज होता है उसे भी बेफिक्र जिंदगी जीनी चाहिए, इतनी बेफिक्र जिंदगी भी नहीं जीनी चाहिए जिसमें वो लापरवाह हो जाए।
1: चलिए, तो अच्छी बात है कि 30 साल के बाद सबको अपनी जांच करा लेनी चाहिए। ये तो ही स्वास्थ्य की बात और मधुमेह के रोग की बात। अब हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई फरमाइश बताइए।
0: मुझे एक देवानंद की मूवी थी हम दोनों, उसमें एक गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अगर ये आप सुना दे तो बेहतर रहेगा।
1: चलिए, आपकी पसंद पर आपको फिल्म हम दोनों का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर, मैं योगेश्वर साहू फुलझर घटर रानी जिला गरिया मन कासखंड छुरा से। सर
0: योगेश्वर जी स्वागत है, क्या करते हैं आप योगेश्वर जी?
1: मेरा दुकान है सर घटर रानी में, टी स्टाइल काफी सेंटर है और आकाशवाणी रायपुर का मैं नियमित श्रोता हूँ, साथ ही लेखन में रुचि रखता हूँ सर और खेती किसानी भी काम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। घटा रानी जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, आप उस गांव की थोड़ी सी खूबसूरती और जो वहां की मनोरम चीजें हैं उनके बारे में बताइए।
1: हाँ, घटा रानी जो है सर राजधानी रायपुर से 70 किलोमीटर दूर राजिम क्षेत्र में स्थित है सर। यहाँ जुलाई महीने में झरनों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, देश विदेश के पर्यटक आते हैं यहाँ पर सर, और जो प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है देखते बनता है सर। मैं आकाशवाणी का बहुत ही पुराना श्रोता हूँ, युवानी चौपाल घर आंगन बिंदिया नमस्कार रायपुर सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर बराबर।
0: आज आपका फोन लगा है, कैसा लग रहा है आपको?
1: पहली बार फोन लगा है सर, फोन इन फरमाइश है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था।
0: अच्छी बात है,
1: और लग गया।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सर अभी गर्मी बढ़ गया है बहुत ही, तो एक गाना है सर कुली नंबर वन का है और गायक है कुमार सानू पूर्णिमा और संगीतकार है आनंद मिलन सर, और गीत के बोल है गर्मी के मौसम में वो पांव जले है सर, ये वाला गीत है।
0: चलिए आपको हम आपकी पसंद पर फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: फोन इन फरमाइश।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: दिलीप जायसवाल, ग्राम छिरहा, जिला बेमेतरा से।
1: दिलीप जायसवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
0: दुकान है सर, किराने का।
1: तो आप
0: रोजमर्रा की सामाने
1: अपने कारोबार के साथ साथ रेडियो का भी आनंद किस तरह से लेते हैं?
0: रेडियो चलते रहता है सर, दिन भर रेडियो चलते रहता है।
1: क्या क्या कार्यक्रम आपको आकाशवाणी

0: के अच्छे लगते हैं।
1: आकाशवाणी रायपुर का मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम सर जो गुमाड़ी लगता है, और अगर छत्तीसगढ़ी में प्रसारण होता है उस दिन तो उसमें चार चांद लग जाता है।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सर मुझे वो एक जितेंद्र और मौसमी चटर्जी में फिल्म आया है, मेघा रे मत परदेस जा रे।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: कमलकांत गुप्ता बोल रहा हूँ, पिपरिया जिला कबीर धाम से।
0: गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, आप तो
1: 90 वर्ष पूरे हुए सर प्रसारण क्षेत्र, इसके लिए आप सभी को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं।
0: आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपका आभार और धन्यवाद, साथ ही साथ हमारी ओर से भी

0: शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी श्रोताओं की वजह से ही हम यहां तक 90 साल का सफर पूरा कर पाए हैं। आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं, आपकी चिट्ठियां भी आती रहती हैं, फोन भी आते रहते हैं, तो आप श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं? आप
1: यही है सर कि हमारा जो लगाव है, हमारी सांसें जब तक है रेडियो और संगीत से जुड़ा है
0: जी।
1: हमारे तो यही मतलब ये है, मतलब कि आगे सोच और विचार यही रखते हैं कि बस गीत संगीत और रेडियो से जुड़े रहें, और जो चीज हम इससे प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो हमको इसमें जो एक चीज मिला है आकाशवाणी रायपुर से
0: जी,
1: सब भंडार जो मिला है हमको बोलने का, जो तरीका सलीका जो प्राप्त हुआ है
0: जी,
1: हर एक एक शब्द मार्मिक होता है आकाशवाणी रायपुर, आकाशवाणी से कही गई बातें, ये चीज सीखने को मिला है सर जी हमें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: एक कली मुस्काई का एक गीत है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में है वो गीत।
0: चलिए,
1: समय तो मशहूर गीत है सर ये।
0: आपको आपकी पसंद पर एक कली मुस्काई का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो, फोन इन फरमाए।
1: हाँ, मैं मनोज साहू बोला था भैया। मनोज साहू।
0: मनोज जी, क्या करते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? और
1: मैं तो दुर्ग में रहता हूँ भैया, धनौरा में, मान में
0: जी।
1: सरगिरा पचपेड़ी मेरा गांव है। और मैं कुछ जाना मतलब सुनना चाह रहा हूँ माध्यम से।
0: अच्छी बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सूरज।
0: फिल्म सूरज का ये गीत आपकी पसंद पर सुनवाते हैं।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भिलाई 3 से चित्रा पांडे बोल रहे हैं।
0: क्या करती हैं आप?
1: हम हाउसवाइफ हैं।
0: हाउसवाइफ हैं।
1: दिनचर्या सुबह 4:30 बजे उठना, योगा वगैरह करना, थोड़ा सा घूमना फिरना, चाय पानी, फिर टिफिन के बाद अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, गाने सुनना।
0: आकाशवाणी के आप श्रोता हैं, अपने बारे थोड़ा सा बताइए। आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: आकाशवाणी के तो वैसे हमारे फेवरेट प्रोग्राम हुआ करते थे युवाणी, और दोपहर में जो, और
0: दोपहर के समय में हमारे यहाँ से घर आंगन और बिंदिया, ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रसारित होते हैं।
1: समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है, अब सुबह ही ज्यादा सुनना होता है मेरा। सुबह भक्ति संगीत से जो शुरू होता है वो 9:30-10 बजे तक अनवरत चलता है मेरा रेडियो।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ भैया जी,
0: जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ, महेंद्र गंधर्व बोल रहा हूँ सर, गरिया बंजीरा से।
0: महेंद्र गंधर्व जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: सर मैं जिला अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ मानव अधिकार से।
0: मानव अधिकार के बारे में बताइए जरा सर।
1: मानव अधिकार में सर

0: ऐसा है कि मानव की तो जहाँ भी हनन हो रहा है वहाँ का हमको सेवा बिल्कुल देना पड़ता है। यहाँ का फोन के माध्यम से हम पहुँचते हैं, जनता की सेवा करते हैं, कहीं थाना अदालत कहीं उसके काम नहीं हो रहा है वहाँ जाके हम मिलजुल कर उसको काम कराते हैं। सर उसको
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: ऋषि जी का रात की हथेली।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं हेमंत कुमार साहू बोल रहा हूँ, गरियाबंद ढोरसा से।
0: हेमंत कुमार साहू जी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हमारे गांव सर यहाँ घटरानी मंदिर के पास है, 10 किलोमीटर के पास में, और घटरानी जी में मेरा एक छोटा सा दुकान है प्रसाद वगैरह का। गर्मी की वजह से बंद है सर, जैसे बारिश चालू होता है ना वैसे रौनक लग जाता है वहाँ, दुकान वगैरह चालू हो जाता है।
0: छुट्टियों के दिन में आप क्या करते हैं?
1: क्या है सर, गर्मी के दिन में खाली भी रहता है घर में, थोड़ा खेत वगैरह है तो वही वाला काम चलता है।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: घुंघरू की तरफ बजता ही रहूं वाला गाना सुनना है सर मुझे।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जानू राम साहू धूरसा से बोल रहा हूँ जी।
0: जानू राम साहू जी का कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: ऐसी खेती किसानी।
0: अच्छा,
1: मजदूरी।
0: तभी तो खेती के दिन आने वाले हैं, बारिश भी होने की तैयारी है।
1: क्या बोलते हैं, नवरात्रि हटे है बरसात के, तब से अभी तक से पानी नहीं गिरे है हमारे तरफ। पानी के इंतजार है, जून हो गए 10-11-12 जून आज है करीब। तैयारी चला थे खेत खार के। अभी
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: अंधा कानून के लगा दें। ये अंधा कानून है।

0: तो आज बस इतना ही। इसी के साथ फोन इन फरमाइश ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया संजय पाठक ने। इसी के साथ दीजिए अनुमति, स्वीकारे हमारा नमस्कार।
1: कार्यक्रम फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्वभर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से ही शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आज विश्व रक्तदान दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव माधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल

0: समापन हो गया है। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने की अपील की। एनटीपीसी परियोजना प्रमुख स्वप्न कुमार मंडल ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। कोरबा कटघोरा मार्ग पर छुरी के पास राखड़ से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कटघोरा पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया। इस दौरान करीब घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने की भागीदारी। जशपुर अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं श्वेता शेट्टी।

श्वेता शेट्टी के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में यशपाल तंवर की लिखी रचना

शशिकांत मिश्रा का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर श्वेता शेट्टी का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं श्वेता शेट्टी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं यशपाल तंवर का गीत श्वेता शेट्टी के स्वर में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थीं श्वेता शेट्टी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आप मन के गीत।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के कार्यक्रम आप मन के गीत सुनैया जम्मू संगवारी मन ला प्रवीणा त्रिपाठी के राम राम संगी हो। आप मन के अब्बड़ पोस्ट कार्ड और ईमेल हमला मिल चुके हवे ता अब शुरू करन आज के कार्यक्रम आप मन के गीत। पहले गीत ला सुनवावत हन आप मन ला कन्हैयालाल डटसेना जानकी बाई और साथी मन के स्वरमा और एला सुने बर ईमेल पठो आप मन इंदिरा नगर भमरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा राजू नेहा जगदीश देवांगन धरसिंवा ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना रानू खुशी प्रवीण साहू इकबाल कुरैशी दुर्गापारा सतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था प्राची प्रिया अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव सिंगारपुर पैलीमेटा ले चिंताराम धुर्वे कामेन चंद्रध्वज सानू धुर्वे सलोनी घुमका ले देवचरण साहू हेमा वेदांत वैभव साहू जैसा कर्रा चारामा ले असाडूराम निषाद खिलावन ऋषभ निषाद मड़ौदा जालबांधा ले पारखदास साहू किरण साहू दत्रिंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा सलोनी राजनाथ गांव ले प्रियांशु और गौरव साहू रोहासी ले डगेसर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम साहू तेंदुभाटा मगरलोड ले उमेंद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण और नूतन निषाद और परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया और पाती पठो आप मन नेहरू आठ भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत और राघवेंद्र साहू देवकर ले संतोष केशरी उर्मिला प्रियंका शुभम भाटापारा ले श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा रावण भाटा भाटापारा ले बबला यादव रिखी राम यादव श्रीमती कमलेश्वरी यादव सिद्ध बाबा भाटापारा ले कामता यादव सोनमत यादव मन्नू निकिता यादव मोती गार्डन भाटापारा ले मोतीलाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार चिंटू युग कुमार झेरिया शिवरी नारायण ले धर्मेंद्र केशरवानी योगेश मोनिका राजेश केशरवानी और भाटापारा ले राम कुमार राउत अमरीका गणेश कार्तिक और युवराज राउत। तो आओ सुने जाए आपन के पसंद माँ कन्हैया लाल डटसेना जानकी बाई और खर साथी मन के गाए ए लोकगीत।

उमेश कुमार, राम कुमार, विक्की सेन, गुड़ा राजले, मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा, देवेंद्र लवीना, चंचल वासनी, गरिमा साहू, सहा मालगीले, सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी आकाश, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी, मोरेंगा राजिमले, खुमान सिंह पटेल, तेजेश्वनी मिष्टी, एकांश पटेल, गंडई पंडरियाले, शिवा यादव, राज चिंटू, तरुण यादव, कन्हैया, निर्मला चुवाराम, कुमार यादव, पलारी ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा, ईशांत देवांगन, सोंगा मगर लोडले, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, गजेंद्र कुमार चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, हेयांश कुमार चंदन, लोरमी चचेड़ी ले, मोहन सिंह मरावी, सविता रिंझा, तनु राही, जगदीश सिंह, सावित्री, चमन अमन, सुमित मरावी, कोयलारी कवर्धा ले, कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेन्द्र, साहिल चंद्राकर, बोगाटोला मोहला मानपुर ले, मानिक राम सिन्हा, सविता देवी सिन्हा, तारामती, मुनिंद कुमार, इंदु और चांदनी सिन्हा। और पोस्टकार्ड भेजो आप मन, सुभाष वार्ड भाटापारा ले, एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन, गिरीश, करण यादव, युवान और ढाबेश यादव, रहमानिया चौक भाटापारा ले, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद ताहिर, नवागढ़ कटई ले, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, भाटापारा ले, रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फैज खान, बिल्हा ले, शेख नासिर, महजवीन बानो, लच्छनपुर ले, रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप मन हो कोस्टा पारा सरंगपाल ले, रामचंद जी देवांगन, घासी मामा, युवराज सिंह, सुनैना, पिंकी, गीता, यश, प्रियांश, तन्वी, नीता, चंद्रवती, भागवत, पदुम और समस्त देवांगन परिवार। बुरसुदा छत्तीसगढ़ ले, भगवानी, संतोषी, चंद्रप्रकाश, नेहा, गजेंद्र और चिराग सेन। और शीतला मंदिर वार्ड अहिवारा ले, डबल कुमार धीवर, जतिन हेमनराज, बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत, राजू, लव कुमार, लक्ष्य, लक्षु, आंचल माही, बेबी, नानू, पार्थ, अनमोल, राजवीर और समस्त धीवर परिवार। तो आवो सुने जाए आप मन के फरमाइश में कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवंगन के गाए ये लोकगीत।

कार्यक्रम के अगले गीत ला स्वरदे हे कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन और एला सुने बर ईमेल और पाती पठोयो आपमन भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुनबाई फिरत राम मालती धुर्वे देवरी भाटापारा ले गलनूलाल रजक पुनेश्वर रजक फानेश्वर

कार्यक्रम के अगले गीत ला सुने बर ईमेल पठाओ आप मन हरमो भोरम देवले जीवनलाल साहू राजबाई लोकनाथ वेदिका साहू कुठेना पांडुकाले कुमारी झामेश्वरी श्रीमती पुष्पलता भोला कीर्तिमान औझरना विपरिया ले कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता समडिल नवापारा ले मुकेश गुप्ता श्रीमती श्रद्धा आदिति राधे दीपक अंकुर राघव गुप्ता देवरी भाटापारा ले के आर साहू आकाश कमलेश औ मुरली क्षत्रिय भोरमदेव कोडार ले कन्हैया सोनी बिसे लाल पटेल सुखलाल पीला सिंह चरोदाबार नवापारा ले नंद कुमार ठाकुर प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर पलारी ले प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा गेंदा टोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता गजेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि और योगिता गुप्ता रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल साहू गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी औ लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहेल और भारती बघेल औ पोस्टकार्ड भेजो आप मन भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत प्रगु विनय ठाकुर सोना डीहले सुब्रत चौधरी कोरदा ले कलीराम यादव छतराम यादव शेष राम यादव बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार झावेंद्र कुमार वर्मा डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये बेरला हतपान ले रतनलाल यादव शांतिबाई अजय कुमार यादव औ भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मिनी रावत शुभम औ सौरभ रावत तो आवो सुने जाए आप मन के फरमाइश महादेव हिरवानी औ साथी मन के गाये गीत

अगले गीत ला सुने बर ईमेल भेजो आप मन चांदनी चौक गंडे पंडरिया लिए पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा गंडे टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन श्रीमती कचरीबाई दीपक कुमार श्रीमती जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन टेकापार वालोद ले चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी गंडे पंडरिया ले दरियानामल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी नेवई उतई ले विक्की देवांगन श्रीमती उर्वशी जतिन जयंत कुनिका दीपशिखा देवांगन दत्रेंजी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्रवर्मा औ पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन अववंशिका दिवाकर पोस्टकार्ड भेजो आप मन चूड़ी लाइन भट्टापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद छत्तीसगढ़ पलारी ले रसूल बेग कटरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी पहंदा कुरबा ले सम्मेलाल कुर्वे सावित्री देवी कुर्रे सरक बुंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू सिमगा ले लवकुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य आशीष औ प्रकाश सेन बेमेत्रा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सारथी सुषमा सारथी अमलीपदर देवभोग ले निकुंज तिवारी लाची तिवारी ममता तिवारी सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु औ अंकित देवांगन धवलपुर ले धनंजय मिश्रा अर्चना प्रतीक्षा चंद्रकांति गेंदलाल मिश्रा कुल्हाड़ी कोट पांडुका ले नरोत्तम कश्यप नीतू कश्यप मोहनीश कश्यप औ अनुराग कश्यप औ मोहाली छत्तीसगढ़ ले मोहाली चंडीगढ़ ले टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा शुभचंद्र बजाज बिट्टा साहिल बजाज ता आवाओ सुने जाए आप सब मन के फरमाइश में विदुषी ममता चंद्राकर औ कुलेश्वर ताम्रकार के गाए ए लोकगीत।

कार्यक्रम की आखिरी गीत ला सुने बर ईमेल मिले हैं। आप सब मन के खोंदला उदयपुर सरगुजाले जीवधन सिंह पैकरा धुरनी करिश्मा कलेश्वर सिंह बागबहारा भदरसीले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन खमरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सिवनी खुर्द ले मनशा राम पटेल बुधियाबाई भानु प्रताप कुमारी पायल पटेल बागामुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू अड़ार नाथघाट ले भूपेश वर्मा दीपेश वर्मा बाजार पारा बेमेत्रा ले भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जानवी तृप्तेश देवांगन चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू अजय कुमार कुमारी इंद्राणी माया जयकिशन योगेश वासु हेमा राधिका साहू डोंडी लोहारा ले देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी अल कबीर भूत कछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम और सांकरा सोमनी ले नारायण लाल यदु कुलवंतिन देवी देवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद्र कुमार प्रणय और रुद्रांश प्रताप पाती मिले आप सबके सिमगा छत्तीसगढ़ ले श्रीमती सविता जैन प्रदीप जैन शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा शीतला नगर दुर्गले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे भिलाई जामुन ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ संजय प्रधान पूजा प्रधान कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा औ भाटापारा ले श्रीमती अमृता यादव पार्वती श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मी औ प्रेरणा जिम्पी यादव ता आओ सुने जाए आप सबके फरमाइशमा कार्यक्रम के आखिरी गीत मनी राम साहू औ अखिलेश साहू के स्वरमा।

तसंगी हो यही गीत के संग एक कार्यक्रम में ही सिरावत है। आज के कार्यक्रम में गीत ला जोरे रहिन बीरभान साहू मनहा, ता अब देवो विदा अपन संगवारी प्रवीणा त्रिपाठीला। राम राम।

0: आप मन के गीत। अभी आप छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन का एक बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने

0: बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

आए मिलन की रात। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आनंद बख्शी की रचना आइए आप सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है बेमिसाल।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काजल का गीत। साहिल लुधियानवी के बोल थे, संगीत रवि का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से 6:45 तक, 7 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी दिन में 1:30 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा, रक्तदान कर जीवन दान दे सकते हैं। सुनिएगा वार्ता, विकास की नई दिशा और नारी शक्ति। वार्ताकार होंगी श्रीमती रश्मि द्विवेदी, साथ ही सुनिएगा गीत संगीत और घरेलू टिप्स। शाम 5 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर आजकल में सुनिए चर्चा विश्व रक्तदान दिवस पर। क्रम रागनंदिनी होगा, आलेख और संपादन वीरभान साहू का होगा और सुनिएगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत।

कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर आज आप सुनेंगे गरियाबंद जिले की चिट्ठी, आलेख फरहाज मेमन का होगा। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दिन में 2 बजे और दिन में 2:30 पर।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एस्बेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से 6:45 तक, 7 बजे से रात 8:45 तक और रात 9:15

खेल की समाप्ति तक। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, और युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर आजकल में सुनिएगा चर्चा विश्व रक्तदान दिवस पर। क्रम रागनंदिनी होगा जिसमें आलेख और संपादन वीरभान साहू का होगा, और सुनिएगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अमूल्य होता है। इसी विचार के साथ कीजिए स्वीकार आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं जिनका उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर उन सवालों पर हमें सोचना तो पड़ता ही है कि इस सवाल का उत्तर दिया कैसे जाए। बहनों, आप भी कभी ना कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना तो कर ही होंगी। वैसे मेरे पड़ोस में रहने वाली गुड्डी सवालों की पोटली है। उसकी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उसके सवालों से परेशान होकर तो कई बार उसके माता पिता उसे मेरे पास ही भेज देते हैं, ये कहकर कि अपनी प्रिय आंटी से पूछो। अब तो वो खुद बेझिझक अपने सवाल लेकर सीधे चली आती है मेरे पास। कई बार उसके सवालों में इतनी गहराई होती है कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इतनी सी उम्र में उसकी सोच इतनी बड़ी कैसे है। आज ही सुबह वो मेरे पास आई। उसने आते ही कहा मुझे रक्तदान देना है। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, देखा और पूछा उसे कि किसे और क्यों देना है तुम्हें। उसने बताया कि उसकी सहेली को थैलीसीमिया है, उसे बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी डोनर मिलते नहीं है जल्दी, इसके कारण उसे स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ती है। थैलीसीमिया ऐसी बीमारी है जिसे शरीर में हीमोग्लोबिन और पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता और लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। मैंने उसकी पूरी बात सुनकर उसे कहा कि तुम्हारे पास जानकारी है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अपनी सहेली की मदद करना चाहती हो, तुम्हारी ये खूबी मुझे बहुत पसंद है, पर रक्तदान के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं और तुम्हारे चाचा दोनों ही रक्तदान करते हैं। हम एक समूह से जुड़े हैं जिसमें बहुत सारे डोनर हैं। उसने पूछा कि उनकी तरह मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने उसे समझाया कि रक्तदान के लिए आयु का कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वजन का 50 किलोग्राम होना। रक्तदाता को स्वस्थ होना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और खुद को स्वस्थ भी रखना पड़ेगा। उसकी बातें सुनने के बाद ख्याल आया कि इतनी छोटी सी उम्र में भी बच्ची में दूसरों की मदद करने की चाहत है। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है, फिर भी हम इस काम से खुद को दूर रखते हैं। इस विषय पर आप भी सोचना ज़रूर बहनों। वैसे आपसे बातों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, बातें अभी और भी होंगी, पर पहले सुनते हैं अपने सफ़र में ये गीत।

0: फिल्म जख्म का गीत अभी आपने अलका याग्निक के स्वर में सुना। आनंद बख्शी के लिखे बोल थे और संगीत में से पिरोया था एमएम करीम ने। वैसे बहनों, हम स्त्रियां सिर्फ घर ही नहीं संवारती बल्कि बच्चों का जीवन भी संवारती हैं, और जब हमें दायित्व मिलता है तो फिर हम देश को भी एक नई दिशा देती हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई एक वार्ता आपको सुनाते हैं, विकास की नई दिशा और नारी शक्ति। वार्ताकार हैं श्रीमती रश्मि दुबे।
1: बिंदिया कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में एक संजीदा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, विकास की नई दिशा और नारी शक्ति। वर्तमान समय में हम सब अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। कहीं ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कहीं चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं और कहीं आवागमन के सुलभ साधन हैं। यानी हमारा देश भारत विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर इन सब के साथ एक और तथ्य है जो ध्यान देने योग्य है, वह है नारी शक्ति की महत्ता को स्वीकारना। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक उन्नति से नहीं मापी जाती, किंतु इस बात से मापी जाती है कि उस समाज में महिला

महिलाओं की स्थिति कितनी सशक्त और सम्मानजनक है। महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। जो समाज या देश इन मापदंडों को पूरा करता है, वह निश्चय ही विकास के नए आयाम स्थापित करता है। आधुनिक भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड वहां की महिलाओं की स्थिति है। देखा जाए तो महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 50% होती है, तो जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो अपनी आधी आबादी यानी नारी शक्ति को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। सच कहें तो नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की धुरी है। सखियों, अब वह पुराने समय की बातें हो गईं जब महिलाओं का दायरा सिर्फ घर की चार दीवारी और चौके चूल्हे आंगन तक सीमित थी। आज हमारी बहनों ने अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को पहचानना सीख लिया है, समझ लिया है कि देश की उन्नति में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज वे केवल विकास की लाभार्थी बनकर जीना नहीं चाहती बल्कि मार्गदर्शक और लीडर बनने को तैयार हैं। विकास के इस नए दौर में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अंतरिक्ष, राजनीति, खेल, सेना या व्यापार, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय न दिया हो। पहले जहां महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, वहीं आज वे नेतृत्वकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षिका, उद्यमी और नीति निर्माता के रूप में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, आज सरकार और समाज दोनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें तो किसी भी महिला के सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी शिक्षा ही है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं जागरूक बनती है बल्कि पूरे परिवार को और समाज को शिक्षित करने का कार्य करती है। सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। आज बेटियां विद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में वे शीर्ष स्थान प्राप्त कर रही हैं। यह परिवर्तन भारत के विकास की नई दिशा का सकारात्मक संकेत है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी महिलाओं और बालिकाओं की रोजगार परक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भरपूर अवसर प्रदान किया है। इंटरनेट और तकनीक ने सुदूर गांवों तक नई संभावनाएं पहुंचाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए बताया जा रहा है। यह एक स्वैच्छिक संगठन होता है जहां एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सिलाई, कृषि, हस्तशिल्प जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक निश्चित समय तक सक्रिय रहने और सही तरीके से वित्तीय रिकॉर्ड रखने पर इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। एक अन्य योजना है जिसे हम लखपति दीदी योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये या उससे अधिक करने का उद्देश्य रखा जाता है। इसी तरह नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करके कृषि तकनीक में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य बहुत से कार्यक्रम महिलाओं के कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे हैं। उन्हें इन सब के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, ब्यूटिशियन, परिधान निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है और साथ साथ इनके प्लेसमेंट या व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण

प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह महिलाएं खुद आगे बढ़कर अपने साथ की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। यहाँ मैं अपने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती फूल बासन बाई यादव जी का नाम लेना चाहूँगी। आप सब भी इनके नाम से जरूर परिचित होंगे। इन्होंने हमारे राज्य की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत सरकार ने इनके प्रयासों की महत्ता को स्वीकार करते हुए इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पद्म विभूषण श्रीमती तीजनबाई ने अपनी पंडवानी कला के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की सुरक्षा के लिए भी विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि। महिलाओं को व्यापक सुरक्षा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना भी चलाई जा रही है। आज भारत की नारी शक्ति विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में महिला वैज्ञानिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों में महिलाओं का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। खेल जगत की ओर देखें तो यहाँ भी महिलाओं ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर विश्व मंच पर भारत का परचम लहराया है। पीटी उषा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मिताली राज, सानिया मिर्जा एवं अन्य कई महिलाएं निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी उपलब्धियां लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसी प्रकार सेना और पुलिस जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखी जा रही है। इससे प्रमाणित होता है कि वे राष्ट्र निर्माण की हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी महिलाओं ने बड़ी बड़ी कंपनियों के निदेशक और CEO के रूप में सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजनीति के दायरे में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है। जब हमारी महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो विकास योजनाएं अधिक संवेदनशील और समावेशी बनती हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में नारी वर्ग की सहभागिता बहुत महत्व रखती है। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जैसे महिलाएं कई स्थानों पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। शहरों में यदि कामकाजी महिलाओं को घर आने में थोड़ी रात हो जाती है तो उन्हें अपनी सुरक्षा का भय रहता है। इसी तरह लैंगिक समानता का अभाव भी देखा जाता है। आज भी समाज में कई परिवार में लड़की और लड़के के पालन पोषण, शिक्षा इत्यादि में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों की क्षमताओं को कम करके आंका जाता है, यानी बेटियों को समान अवसर नहीं मिल पाते। मातृत्व अवकाश और करियर ग्रोथ में संतुलन बनाना भी महिलाओं के लिए चुनौती भरा होता है। हमें यह समझना होगा कि नारी को सशक्त बनाना केवल महिलाओं का विषय नहीं है, अपितु पूरे समाज की जिम्मेदारी है। केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन भी आवश्यक है। अक्सर घरों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर का सारा काम निपटाने के बाद ही अपने विषय में सोचें। यहाँ भी पुरुष वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नारी वर्ग का बराबर से सहयोग करना चाहिए। परिवार, समाज और शासन सभी को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहाँ बेटियाँ निर्भय होकर अपने सपनों को साकार कर सकें। विकास की नई दिशा का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, एक स्वस्थ और विकसित समाज तभी बनेगा जब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने के समान अवसर की हकदार बने, और तभी समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। हमने सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। यह सपना तभी पूरा हो सकेगा जब नारी शक्ति की समान सहभागिता, उनका नेतृत्व और सम्मान सुनिश्चित होगा। और यकीन मानिए, ऐसे में हमारी नारी शक्ति राष्ट्र

0: निर्माण की अग्रणी शक्ति बनकर उभरेगी। धन्यवाद।
1: विकास की नई दिशा और नारी शक्ति, इस विषय पर अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ताकार थी श्रीमती रश्मि द्विवेदी। बहनों, घर पर हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से रखी जाए तो जो जीवन जो है ना वो सुव्यवस्थित हो जाता है। इसी तरह से जब बच्चों के बस्ते में किताब सुव्यवस्थित होते हैं तो बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगता है। सिर्फ नई किताबें, आकर्षक जिल्द, महंगी पेन नहीं, बल्कि व्यवस्थित बस्ता भी छात्र के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शाला प्रारंभ होने से पहले ही ये हम सभी का दायित्व है कि हम बच्चों को सिखाएं कि पुस्तकों को किस तरह से रखना है। पुरानी किताबों को किसी जरूरतमंद को देकर भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

फिल्म शागिर्द का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद थी हमारे इन साथियों की उर्मिला केशरी, प्रियंका केशरी, मोनिका केशरी, आशा ताम्रकार देवघर से, और इसे सुनना चाहती थी हमारी ये बहनें मगरलोट से गायत्री यादव, भारती कशिश चांदनी यादव, शीतलानगर दुर्ग से अर्पा पैरी, पार्वती राधा चंद्राकर। बहनों, घर पर बड़े बुजुर्ग का होना वर्तमान समय में किसी वरदान से कम नहीं। बड़े बुजुर्गों का अनुभव हमें न केवल उनके अनुभव से लाभ देता है बल्कि उनकी उपस्थिति से ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है। बड़े बुजुर्गों में एक समय के बाद बच्चों की तरह कुछ खाने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। जिस तरह हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं ना, कोशिश कीजिए कि आपके भोजन की सूची में बुजुर्गों की रुचि का भी भोजन शामिल हो। यदि हम ऐसा कर पाए तो नई पीढ़ी बड़ों का आदर करना जरूर सीख जाएगी। इसी बात पर सुनते हैं ये अगला गीत।

मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था राजेश रोशन का। फरमाइश थी हमारी इन श्रोता बहनों की नवगढ़ से शारदा वर्मा, सीमा, दामिनी वर्मा और पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाव्या और सुषमा थी बेमेतरा से। तो बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कीजिए अगली बिंदिया का इंतजार। आप सभी को आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम बिंदिया। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं वाजिद लाभ जांजुआ और स्नेहा पंत के स्वर में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और फिल्म का नाम है पार्टनर।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनीत चौहान के स्वर में। रजत अरोरा ने इस गीत को लिखा था, संगीत विशाल शेखर का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायवाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत के सुनीति चौहान और हर्द कौर के स्वर में। इरशाद कामिल के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफल

0: सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया

0: सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय

0: वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में सबसे पहले सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है मर्यादा।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाज

0: गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए

नाइट इन लंदन। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

आए दिन बहार के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का है और फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म मेरे सनम का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM एंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो लोग रांची और दो गढ़वा जिले के हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश। कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूं वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सीमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से, अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट चुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
2: जी,
3: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और

0: पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था। अभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एम फिल और पी एच डी में, पहले जय रमन साहब थे, मैंने वहीं से एम फिल भी किया, पी एच डी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माई progression has not been quite linear in a straight direction. मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया, और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, इट वॉज योर इनिशियल रिएक्शन, क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट

0: बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता। उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जानें 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो, सबके सब इस जहानी पानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें, वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे, कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़्म पूरी मिलेगी, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में। वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है, इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज, आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स, अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे, वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अलॉट। क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हायत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हायत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे, उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर की बात ना करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम अज कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: प्रोफेसर शोक साहब, द अमाउंट ऑफ टाइम, द कैन से द आवर्स, मंथ्स, लाइफ यू हैव स्पेंट ऑन राइटिंग्स इन एकेडमिक्स, हाउ द पीपल अराउंड यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड हु आर एसोसिएटेड विद यू, यू वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनीबॉडी?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नबीहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे कार्यक्रम रेडियो किड्स में। और मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: आयत,
2: इसराज,
3: अरहम,
4: सौर्य।
0: जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप सबने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा?
1: मैंने राग बिलावल, राग भोपाली और राग भैरव बजाना सीखा और गाना सीखा।
0: अरे इसराज, तुमने तो गर्मियों की छुट्टियों में काफी गाने सीख लिए, एक बजाकर तो सुनाओ।
1: ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तो अब मैं आपको वृंदावनी सारंग की बंदिश सुनाता हूँ।

0: अरहम और सौरभ, आप लोग इतने चुप क्यों हो? आप भी कुछ बोलो।
1: इस बार गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में सिर्फ खेलना और टीवी ही नहीं देखना है, बल्कि कुछ नया भी सीखना है। मेरी दादी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन्हीं की मदद से मैंने भी अपने घर के आंगन में कुछ नए पौधे लगाए हैं। मैं रोज उन्हें पानी देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। जब उन पौधों में नई पत्तियाँ निकली तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादी कहती हैं कि इससे मैंने प्रकृति से प्रेम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सीखा है।
0: शौर्य, आपने क्या सीखा?
2: मैंने जीव दया, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और काफी कुछ सीखा है।
0: चलो अब मैं बताती हूँ मैंने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां बस अब खत्म होने को ही हैं। 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, मगर इस बार की छुट्टियां मेरे लिए बहुत खास रहीं, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे स्पेशल है स्कूटी ड्राइव करना। साइकिल चलाना तो मैंने पिछले साल ही सीख लिया था। इन छुट्टियों में मैंने पापा से स्कूटी चलाना सीखा। इस कोशिश में मैं कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चोट लगने से पहले ही संभाल लिया। काफी मेहनत के बावजूद मैं अभी तक अच्छी तरह स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं दोबारा कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। नबीहा।

0: आपने क्या सीखा?
1: इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैंने बहुत कुछ नया सीखा। मैंने ड्राइंग और कलरिंग की कोशिश की और अपने तरीके से सुंदर चित्र बनाए। मैंने डांस सीखना शुरू किया और रोज रोज प्रैक्टिस करके थोड़ा बेहतर भी हो गया। घर में मैंने मम्मी की मदद करना भी सीखा, जैसे छोटे मोटे काम करना और चीजें संभाल कर रखना। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और खूब मस्ती भी करती थी। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन बीच बीच में मन खेलने का ही हो जाता था। तो कुल मिलाकर मेरी छुट्टियाँ तो अभी सीखने, मस्ती और थोड़ी शरारत से भरी हुई हैं।
0: अरे वाह, आपकी छुट्टियाँ तो बड़ी मजेदार लग रही हैं।
2: मैं एक कविता सुनाऊं?
0: हाँ जरूर।
2: गर्मी की छुट्टियाँ आई, ढेरों खुशियाँ साथ मिलाई। बस्ता बोला अब आराम, हम बोले वाह श्रीमान। आम चूसे कुल्फी खाएं, ठंडी ठंडी लस्सी पाएं। सुबह खेले शाम को गाएं, मिलकर खूब धमाल मचाएं। दारी चुटकुले कहानियां सुनाएं, हंस हंस लोट पोट हो जाएं। नानी के घर जाना प्यारा, लगता जैसे स्वर्ग हमारा। पार्क में खेले दौड़ लगाएं, छुट्टियों में मजे उड़ाएं। मस्ती भी हो सीख भी आए, हर दिन नई खुशी दे जाए। गर्मी की छुट्टियां हैं न्यारी, लगती सबसे प्यारी प्यारी।
3: अरे वाह,

0: अरे वाह, आपने तो कितना अच्छा गाना सुनाया।
1: धन्यवाद।
2: मैं अपनी एक चिड़िया की गीत वाली कविता सुनाऊं?
1: सुनाओ।
2: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर

0: इतना सा ही है संसार, आखिरकार मैं बड़ी हुई, दूर दूर तक उड़ी पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। कैसी लगी?
1: वाह,
2: बहुत अच्छी,
3: बहुत अच्छी,
4: बहुत अच्छी।
2: क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है?
4: हाँ,
5: रक्तदान दिवस।
0: हाँ, वो 14 जून को ही होता है।
2: हाँ,
0: आज तो वही तारीख है।
2: हाँ, आज तो 14 जून ही है। कोई उस पे कुछ बताना चाहेगा?
6: हाँ, मैं बताऊँ?
2: बताओ।
6: जैसा कि आप सभी ने बताया, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। 14 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
2: अरहम, क्या आप बताना चाहोगे रक्तदान के बारे में कुछ?
0: एक दिन राहुल अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया। वहां उसने देखा कि एक मरीज को तुरंत रक्त की जरूरत थी। मरीज के परिवार वाले बहुत चिंतित थे। तभी कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया और मरीज का इलाज शुरू हो गया। ये देखकर राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, रक्तदान एक महान कार्य है। एक व्यक्ति का रक्त कई लोगों के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। उस दिन राहुल ने समझा कि रक्तदान केवल एक दान नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उसने फैसला किया कि बड़ा होकर वो भी रक्तदान करेगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रक्तदान महादान है। ये किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
2: अरे वाह, आपने तो काफी कुछ बता दिया हमें। चलो, मेरे पास एक कविता है रक्तदान पर, क्या मैं सुनाऊं?
0: हाँ जरूर।
2: रक्तदान है सबसे न्यारा, इससे बचता जीवन प्यारा। जीवन पर जब संकट आता, रक्तदान ही काम में आता। एक दान अनेक मुस्कान, यही है रक्तदान की पहचान। नहीं खरीद सकते हम प्राण, पर दे सकते जीवन दान। मानवता का यही संदेश, मदद करें हम ये विशेष। आओ मिल कर ले ये ठान, करेंगे हम भी रक्तदान। जब हो जाए किसी भी योग्य, जरूर निभाएं ये कर्तव्य। रक्तदान का करे सम्मान, सच में है ये महादान।
7: इस दिन रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। रक्तदान से दुर्घटना पीड़ितों, मरीजों और जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के लिए नियमित रक्तदान आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं।
6: अच्छा इसराज, तुमने तो हमें बताया था कि तुमने गाना भी सीखा है,

0: जिसे WHO ने पहली बार मनाया था।
1: हमें तो पता ही नहीं था।
2: अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं। क्या मैं पूछूं?
1: जी जरूर।
2: अच्छा, अभी जब मैं रेडियो आ रही थी तब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स लगी थी और उन्हें देखते ही सभी लोग रुक गए। तो मुझे बता सकता है कि ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं?
0: ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, लाल, पीली और हरी।
2: अरे वाह हम। अच्छा, तो जो रेड लाइट होती है उसका क्या मतलब होता है?
0: लाल बत्ती का अर्थ है रुकना।
2: और ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है?
3: हरी बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ना।
4: अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ट्रैफिक लाइट्स के ये 3 रंग सिर्फ भारत में लागू हैं या किसी और देश में भी इनका चलन है?
0: ट्रैफिक लाइट्स की ये तीनों लाइट यूनिवर्सल है, लेकिन जापान के पास ग्रीन लाइट के जगह नीली लाइट है।
4: हाँ, आपने तो सही बताया। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे?
3: ट्रैफिक लाइट के नियमों का उल्लंघन करने से चालान होता है।
0: ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से एक्सीडेंट हो सकता है। इससे अपनी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।
4: कोई और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जैसे अभी लाल बत्ती पर गाड़ियां रुक गई, पैदल चलने वालों के लिए क्या है?
3: जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई विशेष जगह होती है। यह सफेद और काली धारियों से बनी होती है जो जेब्रा के शरीर जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसका उपयोग सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए किया जाता है।
4: तो अब क्या मुझे बताएगा कोई कि वाहन चालकों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का नियम क्या है?
2: मैं बताऊं?
4: बताओ।
2: वाहन चालकों को जेब्रा क्रॉसिंग पर तेजी से गाड़ी चलाने या ओवरटेक करने से बचना चाहिए।
4: सही बोले।
0: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग कब और कहां बनाया गया था, क्या किसी को पता है?
3: हमें तो नहीं पता।
4: मुझे भी नहीं पता।
0: भी नहीं पता।
4: चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर।
0: हाँ बताओ।
4: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग 1951 में यूनाइटेड किंगडम के स्लो में बनाया गया था।
0: हाँ सही कहा।
4: तो क्या किसी को पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियों की चौड़ाई कितनी होती है?
0: 24 इंच।
4: सही जवाब। मैंने देखा है कि स्कूल के बाहर और रोड पर कई जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। क्या मुझे बताएगा कि वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं?
0: हाँ, रोड साइंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशनल।
2: अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वार्निंग साइंस क्या बताते हैं?
4: ये साइंस ड्राइवरों को आने वाले खतरे, सड़क की स्थितियों या अचानक पैदा होने वाली अड़चनों के बारे में सावधान करते हैं, जैसे स्कूल जोन, स्लिपरी रोड, नैरो रोड आदि।
3: क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस साइन का मतलब क्या होता है जिसमें एक आदमी कुल्हाड़ी लेके जमीन को खोद रहा होता है?
2: क्या इसका मतलब ये है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
3: सही जवाब।
4: शौर्य, क्या आप बताना चाहोगे रेगुलेटरी साइंस का क्या मतलब होता है?
0: मुझको नहीं पता।
4: अरे कोई नहीं, क्या आरम आप बताना चाहोगे?
0: ये साइंस प्रतिबंधों को बताते हैं। इनका उल्लंघन ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जा सकता है, जैसे स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो पार्किंग आदि।
4: आपने तो सही जवाब दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की भावना जगाने वाला ये मशहूर शेर है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। अभी 3 दिन पहले ही उनकी जयंती थी, 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। 19 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने आज़ादी की राह पर कदम रखा था। इसी सिलसिले में वो 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी शामिल हुए, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 30 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए बिस्मिल ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।
3: अब मैं एक उनकी मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना गाकर सुनाऊंगा।
4: सुनाओ।

0: और हम आप बताना चाहोगे कुछ?
1: हाँ
0: बताओ।
1: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक कवि और लेखक भी थे। बिस्मिल उनका उपनाम था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। उनके जीते जी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें से अधिकतर अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। अपनी किताबों को बेचकर जो पैसा मिला उसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। बिस्मिल ने हमेशा कहा कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ही असली जीवन है। फांसी से पहले भी उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए। उनकी समाधि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कहानी हमें हिम्मत, सच्चाई और देश प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
0: अरे वाह, आपने तो हमें काफी कुछ बताया। अब तो बहुत देर हो गई है हमें बातें करते करते, अब घर चले?
2: चलो अब चलते हैं, लेकिन अगले सप्ताह हम दोबारा मिलेंगे इसी समय।
3: तब तक के लिए बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता शामिल हुए। इनमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी समेत 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां कई राष्ट्र व्यापार और रणनीतिक सहयोग में संलग्न हैं, वहीं कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरंकुडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और

बिल्कुल, आज रविवार की शाम आप हैं एफएम गोल्ड के साथ आकाशवाणी दिल्ली के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गीत फिल्म गहरा दाग से शकील बदायूनी के लिखे शब्दों को संगीत की धुनों में पिरोया संगीतकार रवि ने और गाया मोहम्मद रफी आशा भोंसले ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांस।

0: डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा।
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का

0: की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हेमंत दाकेश्वर में आप सुन रहे हैं फिल्म 20 साल बाद का ये लोकप्रिय गीत। इसके बाद ठीक 4:20 पर सुनिएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। सुनते रहिए एफएम गोल्ड।
1: कातिल तुम्हें पुकारूं के जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं।

0: Junior Planning, Junior Engineer Quality, Junior Engineer Billing and Contracts, Accounts Officer, Assistant and Computer Program, Assistant Matron, Stenographer English, Junior Assistant and Computer Operator. Applications must be submitted through the email or by hand or by registered post in the prescribed format. The last date for submission of applications is 22nd June 2026 by 5 p.m. Detailed eligibility conditions, application form and recruitment notifications available on the official website. Do refer to www.dphcl.com. Or you could also go on to www.delhipolice.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा
2: ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट. आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप.
3: अच्छा,
2: इतनी मजबूत है.
3: क्या बात है,
2: इतने सालों के बाद. तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है
3: जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
2: जी
3: उसको खड़ा किया.
2: हाँ
3: जी. मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है. अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं. आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है. तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे. जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ.
2: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ.
3: जी
2: जी. और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं. और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं.
1: nitcindia.com. टाटा मेमोरियल सेंटर निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 19 जून 2026. सैनिक स्कूल अमरावती नगर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. मैस प्रबंधक अवर श्रेणी लिपिक LDC और चिकित्सा अधिकारी अंशकालिक. विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए देखिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर की वेबसाइट sainikschoolamravatinagar.edu.in. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट गुजरात आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. चिकित्सा फिजिसिस्ट 2 पद, नैदानिक मनोवैज्ञानिक 1 पद और बाल मनोवैज्ञानिक 1 पद. विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आवेदक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. वेबसाइट है www.aimsrajkot.edu.in. सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. PGT कंप्यूटर विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान, आर्ट मास्टर और प्रयोगशाला सहायक भौतिकी. अनिवार्य और वांछनीय योग्यता. आवेदन करने की प्रक्रिया, पदों की संख्या और आरक्षण तथा वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolzhansi.com. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय आवेदन कर रहा है इन विभागों और पदों के लिए आवेदन. अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य, संस्कृति और मीडिया अध्ययन विभाग में सह आचार्य तथा अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य. निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम शर्तें, सेवाएं एवं अन्य विवरण के लिए देखिए राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लालिमा अनीशा डेंग। लालिमा जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: थैंक यू करिश्मा एंड वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। मी आल्सो विशिंग यू good day and a big hello. Yes, you're tuned into Parikrama and I think Karishma has briefly outlined what you have in store in the program. Yes, I'm Lalima and again, let me just briefly tell you that we have a selection of news, our discussion segment called Dateline India. We have reports, we have capsules, we have tributes and much, much, much more all over the next 30 minutes, really tightly packed. So we won't waste time. Let's get going. We have the headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France. Inaugurates Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron.
1: झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत।
2: साउथ वेस्ट मॉनसून टू एडवांस इनटू पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड साउथ छत्तीसगढ़ इन द नेक्स्ट 2 to 3 days.
1: 5,000 से अधिक भारतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया।
2: एंड इन आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, इंडिया टू बिगिन कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान इन बर्मिंगम दिस इवनिंग। And now, let's talk about what we just promised a while ago. We have a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level or something very relevant. What could be more relevant today than talking about blood? Yes, because it's World Blood Donor Day. Well, as we say that some heroes do not wear uniforms or stand in the spotlight, but they simply roll up their sleeves and what else? Donate blood. Well, friends, every year on the 14th of June, World Blood Donor Day celebrates these selfless individuals whose small act of giving makes a literally life-changing difference.

0: तो श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक घंटे से भी कम समय में किया गया एक काम कितने से लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। हम अक्सर रक्तदान के बारे में आंकड़े और संख्याएं सुनते हैं, लेकिन इसकी असल जिंदगी में क्या जरूरत है और किस तरीके से इसे मापा जाता है, इसे समझना मुश्किल है।
1: यस, एब्सोल्युटली करिश्मा, थिंक ऑफ दिस, दैट अ सिंगल डोनेशन कैन हेल्प पेशेंट्स इन इमरजेंसीज, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, एड कैंसर ट्रीटमेंट, and you have accidents as well. In India especially, many more accidents happen than we can ever think of, and we also need blood for the critical care during childbirth.
0: हम में से कई लोगों ने ऐसी अक्सर कहानियां सुनी या फिर देखी होंगे कि जैसे कि आधी रात को घबराहट भरे फोन कॉल आना या फिर परिवार के किसी सदस्य का ब्लड डोनर के लिए हॉस्पिटल ग्रुप्स में लोगों को खोजना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि

0: दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूरी मैसेज फॉरवर्ड करना.
1: एब्सोल्युटली. नो आई नो ऑफ अ टेलर करिश्मा इन इंदौर जिन्होंने अपना प्रिय भाई को खोया क्योंकि उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने साथ साथ ऑफकोर्स ही इज डूइंग कैरिंग ऑन विद हिज टेलरिंग वर्क विच इज हिज ब्रेड एंड बटर, बट ही स्टार्टेड अ ब्लड डोनर डेटा बैंक. सो ऑल ओवर इंडिया हुएवर वांट्स टू गिव डोनेट ब्लड, हुएवर वांट्स टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम ऑफ दिस डेटा, दे कैन गिव यू नो गिव हिम हिज नंबर एंड प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम. एंड when you think of blood, actually I'm sometimes I think that one of the most important or significant quotes are of Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose, who said tum mujhe khoon do main tumhe azadi dunga. And I remember Mrs. Indira Gandhi, our former prime minister, who said once that just a few days before she was assassinated, she said mere khoon ka har qatra is desh ke liye jayega. So as if she had a premonition that she will be assassinated. So these are some of the important quotes you think of when you think of blood. That's besides the point, but yes, definitely one drop of humanity, give blood, save lives.
0: बिल्कुल. और अगर हम इस साल की थीम पर थोड़ी गहराई से विचार करें तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या सचमुच एक बूंद में पूरी मानवता की झलक मिल सकती है.
1: Yes, and I'm also thinking of the timeless line by the celebrated Persian poet Jalaluddin Rumi, who said, "You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop." This thought is so very beautiful and carries so much deeper meaning, isn't it?
0: बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और क्योंकि आज की चर्चा में हमने सामूहिक मानवीय प्रयास और एक दूसरे के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी पर इतना बल दिया है कि मुझे भी आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां नजर आ रही हैं जो नज़ीर अकबरवादी की प्रसिद्ध रचना आदमी नामा की हैं. या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारते हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी. तो इसका अगर मतलब समझना चाहे तो इन पंक्तियों में नज़ीर अकबरवादी ने मानवता स्वभाव के अनेक रूपों को उकेरा है. कोई मनुष्य दूसरे के लिए अपने सर्वस्व निछार कर देता है तो कोई उसे कष्ट भी पहुंचाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी की पुकार सुनाई देती है तो सहायता के लिए दौड़कर आने वाला भी आखिरकार वो एक इंसान ही होता है. और रक्तदान इसी मानवता संवेदना करुणा और परस्पर सहयोग का सबसे सुंदर उदाहरण है. तो आइए अब हम अपने सुनने वालों को यूएन के एक अनोखे एम्बेसडर से मिलवाते हैं. उनका नाम है एलेक्स. यह हाथ से बनाया गया एक साधारण सा कैरेक्टर है जिसे 2011 में फ्रांसीसी आर्टिस्ट यासीन एत कासी ने यूएन के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाया था.
1: यस दैट्स राइट. वेल डिस्पाइट बीइंग मेड फ्रॉम जस्ट अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ अ पेन, एलेक्स वेंट ऑन टू बिकम द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट digital ambassador. And what makes Elix so special is not what he is, but what he is not. Well, he has no age, he has no gender, he has no nationality, he has no race, and not even a spoken language. We are referring to him as he for the sake of discussion. Perhaps that is why Elix resonates so deeply, and he could be anyone, he could represent anyone.
0: और यही हमें रक्तदान के असली मकसद तक पहुंचाते हैं. जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह खून लेने वाले के धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता या बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछता. उस पल में इंसानियत अपनी एक अलग ही भाषा बोलती है.
1: यस दैट्स राइट. ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट लेवलर. यू नो समटाइम्स वी से डेथ इज अ लेवलर. आई वुड से ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट लेवलर बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ कास्ट, क्रीड, एनीथिंग. यू ओनली थिंक ऑफ प्लेटलेट्स, यू ओनली थिंक ऑफ ब्लड टाइप्स बिकॉज वी हैव फोर ब्लड टाइप्स एंड दे नीड टू बी matched when we give blood. And a lot of patients who are, we talked about some emergencies a little while ago, but there are people like in dengue you need platelets, in thalassemic patients also need blood. There are certain diseases where blood is required. But platelets also come from blood. So we often have blood banks in good hospitals, and they cater to the blood needs of various patients. And so from time and there is a I think a broad category from a certain age to certain age. Generally they say, no, aap 18 से 65 years के बीच के हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट हैव एनी एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम. इफ यू आर अ थायराइड पेशेंट, इफ यू आर डायबिटीज, यू आर नॉट अलाउड टू गिव ब्लड. एंड ऑफ कोर्स यू शुडंट हैव गॉट अ टैटू और अ बॉडी पियर्सिंग. देयर इज अ वेटिंग पीरियड before you give blood. There are certain do's and don'ts which you can see on the net and be a little aware of. We can't get into the details.

0: But it's important to see before you donate blood that you don't, you are in the safe donation. As a donor, you are in a safe category.
1: बिल्कुल. और इस जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि आजकल के मेडिकल साइंस ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है, लेकिन इससे एक जरूरी सवाल ये उठता है कि कौन रक्तदान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है. और अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, वजन कम से कम 50 किलोग्राम है, या फिर आप स्वस्थ हैं, तो आप रक्तदान कर सकते हैं. बेशक डोनर और लेने वाले दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ मेडिकल गाइडलाइंस जरूर होती हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको सर्दी है, फ्लू है, गले में खराश है, पेट में इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है, तो आपको ठीक होने तक का इंतजार जरूर करना चाहिए.
0: That's right. I just talked about tattoo and body piercing. There's a temporary waiting period for that. You can't donate blood immediately after that. Also, friends, if you've had a dental treatment, you may need to wait for a short period depending on the procedure.
1: और इसके साथ ही हर बार रक्तदान से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल हीमोग्लोबिन का लेवल भी चेक करते हैं, ताकि ये पक्का किया जा सके कि रक्तदान आपके लिए कितना सुरक्षित है. ट्रैवल हिस्ट्री भी मायने रखती है. अगर आप ऐसी जगह पर गए हैं जहां मलेरिया या डेंगू जैसे संक्रमण आम है, तो आपको कुछ समय के लिए रक्तदान से रोका जा सकता है.
0: Yes, and blood needs to be kept very safely at low temperature. Blood has to be stored at low temperature. So it's very important that where the blood banks are, those hospitals, they have a good electricity system. You cannot afford an electricity breakdown, because then the blood will get spoiled. And thankfully, India is in a position, we are now 99% or probably 100% electrified. So we now, it's a new India, it's a new Bharat, where we do have hospitals where there is rarely an electricity cut, so we can store the blood which we get from donors. And we are well equipped now, a new India is well equipped to keep the donor's blood safe when the recipients need that blood.
1: बिल्कुल. और इसी के साथ श्रोताओं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि खून का एक दान किसी की जिंदगी को एक नया मौका दे सकता है. और आज रात कहीं ना कहीं कोई मरीज ऐसे खून पर निर्भर होगा जो सिर्फ किसी दूसरे इंसान से ही मिल सकता है. तो इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए.
0: एब्सोल्युटली. एंड टू काइंड ऑफ क्लोज दिस डिस्कशन एंड क्लोज दिस थॉट, लेट मी वाइंड अप बाय सेइंग दैट वी कैन ट्रूली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस थॉट only when we imagine that the life waiting for blood tonight belongs to someone close to our heart. Unlike ordinary gifts, this one carries no wrapping, no ribbon, and no price tag, friends. This carries only compassion and humanity. One drop of blood can carry hope. One drop can carry kindness. Let me say, one drop of blood can actually carry humanity.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. और सबसे पहले बात श्रीलंका के कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने एक साथ सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगेस लिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: In a spectacular celebration of shared culture and unity, more than 5,000 Bharatnatyam dancers came together at Colombo's Goldface Green today, creating history with the world's largest Bharatnatyam dance lesson. The Guinness World Record citation was presented following the performance, with Indian High Commissioner Santosh Jha receiving the certificate on behalf of the performers and organizers. The breathtaking performance transformed the iconic seaside venue into a vibrant showcase of tradition, discipline, and cultural excellence. The event turned out to be a landmark moment for classical dance and a proud tribute to the enduring cultural bonds between India and Sri Lanka. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
0: All right. Indeed, our classical dances are so very beautiful, so charming. And the best part is, I enjoy, Karishma, watching these classical dances live. Jo maza live dekhne mein aata hai na, stage par, wo aise TV par screen pe dekhne mein utna maza nahi aata hai. And they're very meditative. I feel the performer and the person in the audience both are profoundly involved. And it's almost like meditation when you watch these classical dances. And they're so bright, colorful. Wo eye makeup, wo jo pure bhav hote hain, wo jo mudras hoti hai, steps hote hain, music hota hai, kitna enthralling hota hai. All right, let's move on from

0: तो असद अली खान ने अपने परिवार के वरिष्ठ गुरुओं से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र से ही रुद्र वीणा वादन में निपुणता हासिल कर ली और इसके साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में माने जाने वाले रुद्र वीणा को समय के साथ इसकी जो लोकप्रियता कम हो गई थी उसे बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे दौर में असद अली खान ने इस वाद्य यंत्र को नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण काम किया। उनका संगीत ध्रुपद परंपरा की गरिमा और गहराई को दर्शाता था। संगीत जगत में उन्हें रुद्र वीणा का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि भी माना जाता था और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: Let's talk about Kiran Kher. Yes, she was born on this very day, 1952. We know her as an actress, a television personality, singer and an entertainment producer, known for her work in Hindi films and television. She also became a member of parliament in the Lok Sabha. And talking about her, well, she was born in Bangalore, surprisingly, and not in Punjab, but grew up in a Punjabi Sikh family in Chandigarh. And she's Anupam Kher's wife, and she's also done a vast variety of roles, be it comedy, albeit many roles. Her role has a very wide spectrum. Mm. She graduated from the Department of Indian Theatre of Punjab University, Chandigarh. We know Kiran Kher as someone who acted in Mehuna, Hum Tum, Veer Zara, Mangal Pandey, Rang De Basanti, The Rising, and she's been a winner of 2 national awards.
0: और इसके साथ ही आज जो पुण्यतिथि है भारतीय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और काई पोछे, पीके, एमएस धोनी, केदारनाथ, सोन चुड़ैया और छिछोरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये संगीत।

मीडियम वेव 305.8 एक मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछाप, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़,

0: हिंदू चूहा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रही थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज शाम 6:30 से 6:45, 7 से रात 8:45 और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर सुनेंगे गरियाबंद जिले की चिट्ठी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में आज होगी बात विश्व रक्तदान दिवस पर, साथ ही होगा क्रम राग नंदिनी, आलेख और संपादन बीरभान साहू का, साथ ही होगा क्रम सवालों के आईने में। अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 8:30 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का प्रसारण होगा कल सुबह 7:05 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे विदुषी ममता चंद्राकर और साथ ही कविता पाठ में सुनिएगा शायर जनाब अब्दुल जावेद को सुबह 9:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी सीमा दत्ता। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर फनकार होंगी अमृता नंदी। फोन करो छत्तीसगढ़ ही गीत सुनो, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुति होगी प्रवीणा त्रिपाठी की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सशक्त भारत का प्रसारण होगा कल सुबह 10:00। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विदेश नीति का प्रसारण होगा कल रात 9:25 पर। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में कल दोपहर 1:30 पर आज की बात होगी वृद्धजनों का अपमान कानूनी जुर्म और होंगे क्रम आपकी चिट्ठी और एक ही कलाकार। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में होगी चर्चा विश्व बुजुर्ग दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर, और क्रम विज्ञान मंच में सुनेंगे अक्षता मातुरकर की वार्ता एआई की दुनिया, साथ ही होगा क्रम शामे गजल। किसानों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल में उन्नत बीज के चुनाव, साथ ही दी जाएगी आज की सलाह। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनेंगे कल रात 10:00।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ही। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी।

0: सूरज यूं साथ मेरे दिन भर चलता है, पर सुंदर तो वो तब लगता है जब शाम में ढलता है। सूरज छोड़ जाता है मुझे चांद के उजालों के साथ, शाम तो मेरी शुरू होती है मेरे श्रोताओं के ख्यालों के साथ। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की युवाणी, और इस सफर में आपकी रेडियो हमराही मैं अंजलि
1: और मैं आदित्य
0: आपका हृदय से स्वागत करते हैं। नमस्कार। अरे आदित्य, तुम्हारे हाथ में ये बैंडेड कैसे?
1: कुछ नहीं अंजलि, मैं तो बस रक्तदान करके आ रहा हूँ।
0: अच्छा, रक्तदान। वैसे मैंने भी आज जगह जगह रक्तदान के कई शिविर देखे हैं।
1: बिल्कुल, आज 14 जून है जिसे हम सब विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी ये दिन उन सभी रक्तदाताओं को समर्पित है जो अपना अमूल्य रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाते हैं और इंसानियत की परिभाषा को कायम रखते हैं।
0: बिल्कुल आदित्य, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, यह दिवस आज ही के दिन यानी 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है?
1: 14 जून इसलिए क्योंकि आज ही के दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स ए, बी और ओ की खोज की थी। उनके इसी महान योगदान के सम्मान में पूरा विश्व आज के दिन को मनाता है।
0: हाँ, और साथियों, इसे पहली बार साल 2004 में WHO अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटियों के महासंघ ने मिलकर शुरू किया था।
1: इसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक और मुफ्त रक्तदान को बढ़ावा देना, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और साथ ही साथ युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
0: आदित्य, पर मैंने ये भी देखा है कि काफी लोग अभी भी रक्तदान करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रक्त देने से उनके शरीर में कमजोरी हो जाएगी या खून की कमी हो जाएगी। ऐसी कई अफवाहें उन तक पहुंचती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे और अपने परिचित कभी रक्तदान नहीं करते।
1: बिल्कुल सही कहा अंजलि। साथियों, हमारा शरीर काफी स्मार्ट है। हमारे द्वारा दान किया गया रक्त शरीर बहुत जल्दी रिकवर यानी पुनर्निर्माण कर लेता है, जिससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और विज्ञान की माने तो रक्तदान करने से शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जो स्वास्थ्य को और बेहतर रखने में मदद करते हैं।
0: यानी रक्त देने वाले और लेने वाले दोनों का ही फायदा होता है।
1: बिल्कुल। अच्छा अंजलि, ये तो बात रही रक्तदान करने की, पर यह भी तो बताओ कि कौन कौन रक्तदान कर सकता है?
0: साथियों, ये बेहद सरल है। रक्तदान करने के लिए आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपका वजन कम से कम 45 या 50 किलोग्राम होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हों।
1: यानी अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बेझिझक रक्तदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और साथियों, कुछ ब्लड ग्रुप्स बहुत दुर्लभ होते हैं, जैसे ओ नेगेटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो समाज और इंसानियत के प्रति आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आपातकालीन स्थितियों में यह रक्त किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और इस विश्व रक्तदाता दिवस पर हम आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी से यह अपील करते हैं कि जो भी समर्थ हैं, वे साल में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें। खुद भी आगे आएं और अपने साथियों व करीबियों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी रगों में बहता थोड़ा सा रक्त किसी की सूनी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ सकता है।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,

0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
5: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
6: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
5: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
6: 47 सालों से निरंतर सेवा में
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
7: प्रस्तुत है क्रम राग नंदिनी, इसमें आज सुनिए राग मांड का परिचय, उस पर आधारित फिल्मी गीत, और आप सुनेंगे विदुषी गिरजा देवी एक परिचय। आलेख और संपादन बीरभान साहू का है।

संगीत सीखने से मनुष्य को शांति और सुख का अनुभव होता है। मनुष्य को अन्य भौतिक साधनों से मन की शांति नहीं मिलती है, जबकि संगीत सुनने या सीखने से मन को शांति प्राप्त होती है। अतः संगीत के अच्छे साधक संसार के सुख साधनों को तुच्छ समझता है। इस प्रकार समाज में धीरे धीरे नैतिकता का विकास होता है। संगीत द्वारा समाज में चारित्रिक उत्थान होता है। विद्वानों द्वारा संगीत के महत्व के संबंध में कही इन अमूल्य शब्दों के साथ राग नंदनी के इस अंक में आप सभी गुणी सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकारे अभिवादन, नमस्कार। आज के अंक में चर्चा का विषय है राग मांड, और सुनेंगे इस राग पर तैयार कुछ फिल्मी गीत। साथ ही परिचय प्राप्त करेंगे भारतीय शास्त्रीय गायन के अनमोल रतन विदुषी गिरिजा देवी के संबंध में। आइए कार्यक्रम का आगाज करें राग मांड के परिचय के साथ। राग चंद्रिका सार में राग मांड को इस तरह काव्यात्मक परिभाषा से परिभाषित किया गया है। सपवादी संवादी कर नीस्वर कंपित होए, शुद्ध और संपूर्ण है मांड राग कह।

राग मांड बिलावल थाट का वक्र संपूर्ण राग है। इस राग की उत्पत्ति मालवा और राजपुताना प्रांत में हुई ऐसा माना जाता है। संगीत के विद्वान इसे शुद्ध प्रकृति के राग मानते हैं। इस राग में दोनों निषाद स्वर यानी शुद्ध और कोमल दोनों निषाद स्वर प्रयोग होते हैं। कुछ लोग आरोह में केवल ऋषभ स्वर को और कुछ लोग ऋषभ और निषाद दोनों स्वर को वर्जित कर देते हैं। इस राग का आरोह संपूर्ण और अवरोह वक्र कर गाते बजाते हैं। निषाद स्वर पर आंदोलन इस राग का एक प्रमुख लक्षण है। राग मांड का वादी स्वर षडज और संवादी स्वर पंचम है। चर्चा आगे भी करेंगे, इससे पहले आइए इस राग पर तैयार फिल्म पाकिजा का यह मधुर गीत सुनते हैं।

अभी हमने सुना फिल्म पाकीज़ा का यह प्यारा सा गीत। मांड सूरत बतलाए कान्ह मोहे, शुद्ध सुरन को मेल करे, तामे मध्यम सुर को बढ़ाए, मध संगति अति मधुर चतुर सखी, देखत मन हर्षाए कान्ह मोहे, वक्र गति अवरोहन सखी, मोहे साच कहू मन भाए, सा सा धानी प ध म प ग म रे गा सा गा रे सा, कब हो ना बिसराए कान्ह मोहे। राग मांड एक चंचल प्रकृति का राग माना गया है, पर इस राग को गाने बजाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। मांड राजस्थान की मिट्टी में बसा हुआ राग है। गुजरात के लोक गीतों में भी इस राग की खनक सुनाई देती है। विद्वानों ने मांड राग के 24 प्रकार होने की बात कही है। मांड राजस्थान की मिट्टी में बसा हुआ राग है। वहां की मशहूर लोक गीतों पधारो मारो देश इसी राग पर आधारित है। संगीत के विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि जिस तरह पहाड़ों के संगीत को व्याकरण में बांधकर राग पहाड़ी की रचना हुई, उसी तरह राजस्थान के लोकगीत को व्याकरण में बांधकर राग मांड बनाया गया है। फिल्म लेकिन में हृदयनाथ मंगेशकर ने उसी लोकगीत को लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया था। केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश।

राग मांड का गायन वादन का काल सर्वकालिक होता है। अनेक गुणीजनों के अनुसार राग मांड में साग, रेम, गप आदि स्वर क्रम वाले अभ्युच्छय नामक अलंकार से यह राग उत्पन्न होता है। सा, नीध, म, पग, म, सा। इस प्रकार स्वर गाने से मांड स्पष्ट हो जाता है। राग मांड ने भारतीय हिंदी सिने जगत के संगीतकारों, गीतकारों इनको खूब आकृष्ट किया है। बहुत से मधुर एवं लोकप्रिय गीतों की रचना इस राग पर की गई है। कुछ प्रसिद्ध गीतों में फिल्म पाकिजा के गीत ठाढ़े रहियो ओ बाके यार, फिल्म अभिमान के गीत अब तो है तुमसे, फिल्म पत्थर के सनम के शीर्षक गीत, फिल्म अदालत के गीत यूं हसरतों के दाग प्रमुख हैं। आइए सुनते हैं फिल्म गदर एक प्रेम कथा का यह प्यारा सा गीत।

ये तो था राग मांड का संक्षिप्त परिचय। और आइए कार्यक्रम को गति देते हुए अब परिचय प्राप्त करें बनारस घराने की अनमोल हीरा, भारतीय संगीत की सुप्रसिद्ध आचार्या, जिन्हें शास्त्रीय संगीत की बांसुरी कहा जाता है। जी हाँ, विदुषी गिरिजा देवी के संबंध में।

ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती, विभिन्न आंचलिक लोकगीतों की गायन शैली और भजन में प्रवीण श्रीमती गिरिजा देवी के स्वर की तुलना बांसुरी और शहनाई से की जाती है। महज 5 वर्ष की उम्र में ही बनारस के जाने माने संगीतज्ञ पंडित सरयू प्रसाद मिश्र दादाजी की छत्र छाया में संगीत की ककहरा सीखने के बाद दूसरे गुरु पंडित श्रीचंद मिश्र, जिनका गहरा प्रभाव इनके गायन साधना पर पड़ा, श्रीचंद जी ने गिरिजा देवी को ध्रुपद और धमार की शिक्षा दी। बेहद मिलनसार और सहज स्वभाव वाली गिरिजा देवी की बोली में शुद्ध बनारसीपन की अद्भुत मिठास थी। अद्भुत रस को शक्तिशाली मानती थी।

बाल सुलभ उत्सुकता थी जो उन्हें आकर्षित करती थी। कहा जाता है कि उन्हें खिलौनों एवं गुड़ियों से बड़ा लगाव था। उनके निवास में प्रायः सभी देशों के सैकड़ों बड़ी छोटी गुड़ियां संग्रहित है। 1951 में आरा बिहार में आयोजित संगीत समारोह वस्तुतः

गिरजा देवी के जीवन के लिए एक महान उत्सव था। इस अवसर पर मशहूर कथक नृत्यांगना दमयंती जोशी, पंडित डीवी पल्लुस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जटिल तान के गायक थे। उस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें नए नए कलाकारों को भी अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका दिया गया था। ब्रह्म मुहूर्त में गिरजा देवी ने राग देशी तोड़ी गाया, जिसने सभी को मोह लिया। ट्रेन लेट होने के कारण इसी बीच सूचना मिली कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर समारोह में समय में नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन इसका प्रभाव उस भीड़ पर कुछ नहीं पड़ा, बल्कि भीड़ और उमड़ती चली आई। परिणामतः बनारस की अनजान युवती गायिका गिरजा के स्वर में दादरा, होली और ठुमरी के द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए ने तो आरा महोत्सव में एक महान गायिका और अभिनेत्री ने जन्म लिया।

ताजीवन संगीत सेवा से जनमानस को मनोरंजन करवाने वाली गिरिजा देवी अनेकों उपाधियों से सम्मानों से ताजीवन सम्मानित होते रहे। भारत सरकार का नागरिक सम्मान पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी जैसे सम्मान की लंबी फेहरिस्त है। आखिर 24 अक्टूबर 2017 को सबकी प्यारी गिरिजा ईश्वर को प्यारी हो गई, लेकिन गंगा जमुना संस्कृति की यह अनमोल धरोहर छोड़ गई एक विशाल विरासत।

अनुमति दे। वाचन पायल विशाल, आलेख एवं संपादन बीरभान साहू, प्रस्तुति सुमिता रॉय बर्मन। नमस्कार।

रागनंदिनी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे रागमांड का परिचय और विदुषी गिरिजा देवी एक परिचय और उस पर आधारित फिल्मी गीत। वाचन स्वर था पायल विशाल का, आलेख और संपादन वीरभान साहू का था।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: क्या बात है उमेश?
8: बातें तो होती रहेंगी साथियों, पर शुरू करते हैं हमारा अगला क्रम सवालों के आईने में। दोस्तों, पिछले क्रम में कंपियर्स द्वारा जो सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब आपको बता देते हैं।
9: साथियों, जो सवाल पूछे गए थे वो इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दूसरा, कौन सा पौधा मेंढक और कीटों को फंसाकर खाता है? तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? चौथा, रात्रि अंधकार यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? पांचवा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? और छठा, कंप्यूटर भाषा में WWW का क्या अर्थ है?
8: दोस्तों, और उनके सही जवाब इस प्रकार हैं। पहला, 12। दूसरा, पिचर प्लांट। तीसरा, महाभारत। चौथा, विटामिन ए। पांचवा, चार वर्ष। और छठवा, वर्ल्ड वाइड वेब।
9: चलो अंजलि, तो हमारे श्रोताओं को अब सही जवाब भेजने वालों के नाम बताते हैं।
8: तो दोस्तों, जिन श्रोताओं ने 6 सवालों के जवाब सही दिए हैं उनके नाम हैं राधे श्याम पांडे, ओम प्रकाश मसिया, मोतीलाल भीमते, साबित खान, मोती भीमाते, अशोक साहू, चंदूलाल सिंगरौल, खिलेश साहू, संजय साहू, हीरामणि वर्मा, केशव प्रसाद साहू, फनेश चंदन, गुणीराम राजपूत, कीर्तनपुरी गोस्वामी, कैलाश चंद्राकर, भगत राम पटेल, इंद्रभान सिंह, प्रकाश वर्मा, दिनेश वर्मा, मनोज साहू, प्रज्ञानंद देवांगन, सतीश गिरी, जगेसर देवांगन, उत्तम सिंह जंघेल, ताराचंद साहू, डोमेंद्र नेताम, पच कमल पंजवानी, डगेसर साहू, शिव कुमार अंगारे, जीतू ध्रुव, रामजी साहू, योगेश्वर साहू, रोशन देवांगन, गुप्ता जी, माखन वर्मा, बालकरण वर्मा, रमेश चंद्र कामड़े, दीपक साहू।
9: साथियों, 5 सवालों के सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हैं लता देवी चौहान, दुर्गा राम साहू, चंदूलाल यादव और रमेश यादव।
8: तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्रम सवालों के आईने में के अगले सवाल। पहला, कौन सी मछली पानी में गोलियां चलाती है? दूसरा, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कब लागू हुई? तीसरा, विश्व का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? चौथा, कौन सा रासायनिक तत्व सबसे अधिक तापमान पर तरल अवस्था में होता है? पांचवा, हिंदी कविता के किस कवि को युवाओं का कवि के रूप में जाना जाता है? छठवा, माचू पिचू का निर्माण किस सभ्यता ने किया था?
9: साथियों, प्रश्नों को एक बार फिर से सुनते हैं। पहला, कौन सी मछली पानी में गोलियां चलाती है? दूसरा, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP कब लागू हुई? तीसरा, विश्व का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? चौथा, कौन सा रासायनिक तत्व सबसे अधिक तापमान पर तरल अवस्था में होता है? पांचवा, हिंदी कविता के किस कवि को युवाओं के कवि के रूप में जाना जाता है? और छठवा, माचू पिचू का निर्माण किस सभ्यता के दौरान किया गया था?
8: साथियों, और इन सवालों के जवाब आप हमें भेजिएगा AIR Youth

0: 9@gmail.com पर, और सब्जेक्ट कोड Y12 के साथ। और हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 103 लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम एक बार और आपको बता देते हैं कि आप ये सवाल के जवाब हमें कहाँ भेजेंगे।
1: आप इस सवालों के जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो है airyouth9@gmail.com पर, और क्वेश्चन नंबर 103 के साथ सब्जेक्ट कोड Y12 लगाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ सवालों के आईने में इतना ही।
0: हाय, मैं तो थक गई।
1: क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या कर रही थी अंजलि?
0: सोच रही थी और सोचते सोचते थक गई।
1: फिर से, कितनी बार कहा है इतना सोचना नहीं चाहिए। साथियों, अब आप ही इसे समझाइए, हमेशा अपने ही ख्यालों में दुनिया में खोई रहती है। कभी मुझे तो पुलाव बनाकर नहीं खिलाया, लेकिन ख्याली पुलाव रोज पकता है।
0: तुम भी ना आदित्य, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी टांग खींचने के लिए। वैसे भी तुम तथ्य के पुजारी, हमारी कल्पना का हाल भला कैसे समझोगे?
1: तुम तो बहस करने लगी, अब ये तो बताओ सोच क्या रही थी?
0: मैं सोच रही थी साथियों कि कितना अच्छा होता ना अगर हम एक दूसरे की मन की बातें जान सकते, किसी संदेह का या गलतफहमी की जगह ही नहीं रहती।
1: भला ये भी कोई बात है? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या अंजलि?
0: वही ना आदित्य, नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। इसलिए तो सोचती हूँ कुछ अनकही बातों के कारण हम लोगों के में कितने फासले आ जाते हैं। काश हम सब एक दूसरे को और अच्छी तरह समझ पाते, दुनिया और खूबसूरत हो जाती ना।
1: इतनी सी बात, बस इसलिए परेशान हूँ? ऐसा है तो तुम उस शख्स की आंखों में देखो, दिल का हाल तो नजरें बयां कर देती है ना। सच झूठ सब समझ में आ जाएगा उन आत्मा की खिड़कियों से। खैर दोस्तों, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, पर चलते हैं आपके पसंदीदा क्रम फिल्मी संगीत की ओर। प्रस्तुत है हमारा पहला प्यारा सा गाना।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से यह गीत। आवाज थी आतिफ असलम की, गीत था इरशाद कामिल का और संगीतकार थे प्रीतम।
1: और फरमाइश करता थे पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता शशांक सीमा साहू, देवरी भाटा पारा से मुकेश कुमार रजक, युवान हाव्या तनु रजक, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारिणी सूरज ज्योति ठाकुर, बनिया पारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, राहुल सविता स्वाति मखीजा।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
7: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
8: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
7: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
8: 47 सालों से निरंतर सेवा में
7: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: आदित्य, कितना सुकून होता है ना संगीत में। पता है मैं लिखते समय भी गाने सुनती हूँ, पर एक और चीज़ है जो मुझे उतनी ही पसंद है।
1: और वो क्या है अंजलि?
0: फिल्में देखना, और खासकर अगर वो फिल्म वास्तविकता से प्रेरित हो। अरे, इन फिल्मों की बातों से मुझे एक गाना याद आ गया। तो चलिए साथियों, सुनते हैं क्रम फिल्मी गीत की अगली प्रस्तुति।

0: साथियों, आपने सुना फिल्म रेड का ये गाना, सुरों से सजाया था राहत फतेह अली खान ने, गीत था मनोज मुंशीर का, संगीतकार थे तनिष्क बागजी।
1: और इस गाने के पसंद करने वाले हैं रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा, शुभम, सेजल साहू, ग्राम भानपुरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव, विदेशी, होमू, मनेश्वर यादव, गांव तेंदु भाटा मगर लोड, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से उमेद कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन निषाद।
0: बातें करते करते समय कब हो जाता है पता ही नहीं चलता ना साथी।
1: बिल्कुल,
0: तो जाते जाते आपको कल के कार्यक्रम बता देते हैं। कल की युवाणी सजेगी हिंदी में और आप सुनेंगे विज्ञान मंच में सुनेगा वार्ता एआई की दुनिया, वार्ताकार होंगी अक्षदा मानूरकर और सुनेगा शामे गजल। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए
1: और स्वीकारिए हमारा
0: नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और

0: वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख है फरहाज मेमन का।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गरियाबंद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रूपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी।

0: राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। श्रोताओं, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में भी 9 जून से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के तहत अब नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। इस हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर विकासखंड में 22 जून से रेस रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की जा रही है। इस अकादमी के माध्यम से विद्यार्थियों को एसएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, अग्निवीर सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली से कराई जाएगी। श्रोताओं, देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। किसान 4024598180 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन तथा अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 10 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पूरे होने से सुपेबेड़ा, सागुनबाड़ी, सेंधमुड़ा, खम्हारगुड़ा और ठिल्लीगुड़ा सहित 9 गांवों के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के तहत लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं शेष बचे कार्यों को 5 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के पूरा होने से इन गांवों के 2000 से अधिक परिवारों को घर घर नल कनेक्शन का लाभ मिलेगा। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सभी तालाबों और जलस्रोतों में मत्स्याखेट कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 25,000 रूपए जुर्माने का प्रावधान है। श्रोताओं, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा आगामी 19 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा फील्ड स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड सहित 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई रोजगार पोर्टल तथा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख था फरहाज मेमन का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 हुए हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीवा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री है आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 छीन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश

भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई ठीन कार्यक्रम। ए बछर के थीम रखे गए है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे मां और बेरा लग सकत है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी मां 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 ठीन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। ए मौका मां श्री साय कहिन कि ये विकास काम मन के माध्यम ले सड़क, पिए के पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना, गाँव के विकास ले जुड़े सहूलियत बाढ़ी। आज विश्व रक्तदान दिवस हरय। ए मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव हा देशवासी मन ले स्वैच्छिक रक्तदान के अपील करे हैं। श्री नड्डा और श्री जाधव सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व बारे में जागरूकता बढ़ाए बर जोर दीन। ए बछर विश्व रक्तदान दिवस की थीम है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। विश्व रक्तदान दिवस के मौका में आज छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ अकन कार्यक्रम हुआ थे। एक कड़ी में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के छत्तीसगढ़ इकाई डहार ले लोकभवन में हुए समारोह में राज्यपाल रमेन डे कहा 30 झीन स्वैच्छिक रक्तदाता मल्ला सम्मानित करीन। ए मौका में लोकभवन में रक्तदान शिविर राखेगीस जेमा लोकभवन के अधिकारी कर्मचारी समेत आने मनखे मन घलो रक्तदान करीन। समारोह में बोलत राज्यपाल हकीन कि कोनो भी मनखे के सबले बड़का धर्म है दूसर के जीवन बचाना और एहर कहूँ अपन खुदे के खून के एक बूंद ले होही तो एखर ले बड़का कोनो पुण्य नहीं हो सके। उमन बतैन की थैलीसीमिया, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर और एक्सीडेंट असन इमरजेंसी हालत में खून के जरूरत है जियई मरई के बीच अंतर तय करते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तैयारी चलत आयुष मंत्रालय भारत सरकार और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग ले आज बिहनिया एक ठीन विश्व स्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम रखे गए रहीस। ए कार्यक्रम के उद्देश्य YouTube लाइव योग स्ट्रीम पर सबले ज्यादा देखैया मन के नवा विश्व रिकॉर्ड बनाना रहीस। एकर जरिए संसार भर के योग अभ्यासकर्ता और वेलनेस उत्साही मल्ला एक ठीन डिजिटल मंच में सकेले के प्रयास करेगी। ये ऑनलाइन योग सत्र बिहनिया 6:15 ले 7:35 तक रखे गए रहीस। एमा करीबन 130 देश ले लोगन मन शामिल हुईन। अवैया 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही। एकर पहली दुर्ग पुलिस लाइन मा आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो एक कार्यक्रम हुईस। एमा योग विशेषज्ञ मन योग के जरिया पुलिस कर्मी मन के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन खातिर उत्साह बढ़ाए बर जोर दीन। उमन यहू बतेन की मानसिक शांति और आत्म जागरूकता मन खे मल्ला नशा पानी ले दूर राखथे। जसपुर जिला अब रेलवे नेटवर्क ले जुड़ी। केंद्र सरकार है धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नवा रेल लाइन प्रोजेक्ट ला विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करे है। करीबन 292 किलोमीटर ये रेल लाइन है जसपुर ला पहली बेर राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ले जोड़ी। एखर ले क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योग मन ला घलो बढ़ावा मिले के उम्मीद है। कबीर प्रकट दिवस के मौका में दुर्ग जिला के करहीडी गांव में पुलिस विभाग डहर ले सड़क सुरक्षा अभियान के संगे नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम रखे गए रहीस। कार्यक्रम दौरान लोगन मन ला ट्रैफिक नियम के पालन करे के संगे दुपहिया गाड़ी चलात बेरा हेलमेट लगाए बर जागरूक करेगीस। उन्हें साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी ले बाँचे बर लोगन मन ला फर्जी लिंक में क्लिक नहीं करे के संगे कोनो भी मनखे ला OTP नहीं दे बर अपील करेगीस। कार्यक्रम में माई लॉगिन कमांडो मन ला सुरक्षा किट बांटेगीस। राज्य सरकार डहर ले मोर गांव मोर पानी ए अभियान के चलत जल संरक्षण ला जन आंदोलन के रूप में देखे जाते। यही कड़ी में बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर विकासखंड में गवई के मनखे जनप्रतिनिधि और स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन मन श्रम दान करके एक दिन में 2000 जल संरक्षण संरचनाला बनाई है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय DPI है स्पष्ट करे है कि राज्य के सबो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल मन परन दिन 16 जून के शुरू हुई। विभाग है 22 की सोशल मीडिया के आने आने माध्यम में 1 जुलाई ले स्कूल शुरू हुए के भ्रामक और फर्जी सूचना प्रसारित करे जाते। DPI है पढ़ैया लयिका उनखर पालक और लोगन मन ले अपील करे है कि वो मन आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यही बीच जांजगीर में पत्रकार मन ले गोड़ बात करत मुख्यमंत्री है स्पष्ट करे है कि प्रदेश के सबो स्कूल परन दिन 16 जून ले ही खुल ही। उमन कहिन की तारीख आगू घुचाए बर कोनो चर्चा नहीं हुई है। उन्हें हर साल असन ए बछर घलो स्कूल मन में साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही।
छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।

0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़वो बांचे समाचार डहार। बिलासपुर में NTPC सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान के काली समापन होगी। 4 सप्ताह तक चले ट्रेनिंग में 121 जिन ग्रामीण नोनी मन योग आत्मरक्षा कंप्यूटर संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई तीन विषय के प्रशिक्षण लीन। कलेक्टर संजय अग्रवाल हा उखर पालक मन ले नोनी मन ला आगू बाढ़े के समान मौका देखातिर अपील करीन। ए मौका में NTPC हर बछर 10 जिन मेधावी

0: एनटीपीसी सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान के काली समापन होगी। चार सप्ताह तक चले ट्रेनिंग में 121 जिन ग्रामीण नोनी मन योग आत्मरक्षा कंप्यूटर संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई तीन विषय के प्रशिक्षण लीन। कलेक्टर संजय अग्रवाल हा उखर पालक मन ले नोनी मन ला आगू बाढ़े के समान मौका देखातिर अपील करीन। ए मौका में एनटीपीसी हर बछर 10 जिन मेधावी नोनी ला कक्षा 6वीं ले 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दे के घोषणा करे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अभि मानिकपुरी ले मुलाकात करीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हकी की छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपन प्रतिभा अनुशासन और कड़ा मेहनत के बल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सुग्घर प्रदर्शन करके प्रदेश और देश के नाव ला उज्जर करत हैं। रायगढ़ जिला में जेल में धंधा एक जिन विचाराधीन कैदी के सस्पेंस हालत में मौत होए बाद उखर परिवार वाले मन हंगामा मचेन। काली हुरहा तबियत बिगड़े बाद एक कैदी ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराई गई रहीस जिहां इलाज के दौरान उखर मौत हो गई। शक्ति जिला के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक के फर्जी शाखा चलाए और नौकरी लगाए के नाम में ठग के फरार तीन झीन आरोपी ला माल खरोदा पुलिस गिरफ्तार करे ही। मामला में आगू घलो मुख्य आरोपी अनिल भास्कर समेत 6 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल पठो दे गए है। अब वापस है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में और बेरा लग सकत है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ला बताई कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरजई चमकई के संगे सीटर साटर पानी और गाज गिर सकत है। उन्हें अवैया तीन चार दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून हा कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में पहुँच सकत है। अब थोरकुन समाचार सार मा। जांजगीर चांपा जिला में एक ठीन कथित ऑडियो वायरल हुए बाद जिला शिक्षा अधिकारी है संविदा पीटीआई नल साय दिवाकर ला सस्पेंड कर दी है। जगदलपुर में हुए बस्तर आम महोत्सव में किसान मन आमा के 2000 ले ज्यादा प्रजाति ला दिखाईन। और चंडीगढ़ में 10 जून ले 13 जून तक हुए राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव के हेमवती नागा कांस्य पदक जीते है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। मुख्यमंत्री है आज जांजगीर चांपा जिला के गांव पोड़ी में 295 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत वाले 341 ठिन विकास काम के करीन लोकार्पण और भूमि पूजन। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में देश भर समेत छत्तीसगढ़ में हुआ थे कई ठिन कार्यक्रम। ए बछर की थीम रखे गए है मानवता के एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचावें। और मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचे में अव बेरा लग सकत है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधि मंडल स्तरीयां वार्तां कृतवान्। अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अधिक सुदृढ़ीकरणे बलं दत्तम्। रक्षा प्रविधि व्यापारादिषु क्षेत्रेषु सहकार्य विस्तारस्य विषये उभाभ्यां नेतृभ्यां विचार विमर्शः कृतः। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों इत्येषः वैश्विक नवोन्मेष शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति न वा, अपि तु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी अस्तीति। आयुष मंत्रालयः अद्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम इत्यस्मै सर्वाधिक दर्शकानां कृते नूतनां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखं निर्मितवान्। अपि च आईसीसी महिलानां टी20 विश्व कप इति क्रीडायां भारतम् अद्य सायंकाले वर्मिंगहम नगरे पाकिस्तानं विरुद्ध्य स्वकीयाभियानं आरप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देश से

आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है का गीत। आवाज कुमार सानू की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत जतिन ललित का है।

लीजिए अब सुनिए फिल्म मर्डर का गीत, आवाज आमिर जमाल की है, गीतकार है सईद जाफरी और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

0: stop along with the
1: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। इस मैच का आंखों देखा हाल फिर से सुनिएगा शाम 7 बजे से। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 होने को है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुद्धू।
8: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
9: पर कार जीत जाते तो
6: पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा

0: बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आज सुबह एक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के लिए सबसे अधिक दर्शक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना था। इसके जरिए विश्व भर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करने का प्रयास किया गया। यह ऑनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक आयोजित किया गया। इसमें करीब 130 देशों से भागीदारी की गई। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले दुर्ग पुलिस लाइन में आज सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों ने योग के जरिए पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मानसिक शांति और आत्म जागरूकता व्यक्ति को नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखने में सहायक होती हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर 1 जुलाई से सत्र शुरू होने की सूचना प्रसारित

0: की जा रही है, जो पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इस बीच जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी स्कूल 16 जून से ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख आगे बढ़ने के को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा और श्री जाधव ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने 30 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर लोक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोक भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पौणी में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरी अधोसंरचना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण नहीं होते, बल्कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनते हैं। जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने श्रमदान कर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण संचराओं का निर्माण किया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के करहीडी गांव में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के साथ ही नशा मुक्ति और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों से फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करने और किसी व्यक्ति के साथ OTP साझा नहीं करने की अपील की गई। कार्यक्रम में महिला कमांडो को सुरक्षा किट वितरित की गई। बिलासपुर में NTPC सीपत के बालिका सशक्तिकरण अभियान का कल समापन हो गया। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में 121 ग्रामीण बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा, कंप्यूटर, संवाद कौशल और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों का प्रशिक्षण लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों से बेटियों को आगे बढ़ाने के समान अवसर देने की अपील की। इस मौके पर NTPC ने हर वर्ष 10 मेधावी बालिकाओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर

0: स्थित उनके निवास कार्यालय में भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता सदस्य अवि मानिकपुरी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा भिलाई स्थित कुहुकी कला ग्राम संग्रहालय परिसर में आज से लोक वाद्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लोक वाद्य संग्राहक रिखी छत्री ने बताया कि 23 जून तक चलने वाले इस कार्यशाला के दौरान खंजेरी, तंबूरा, गतका, तुरही, चरहे, चिटकुली, कुहुकी और रुंजू जैसे वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यशाला हर दिन सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक आयोजित होगी। इसमें हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। रायगढ़ जिले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और मौत को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस और जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। सक्ती जिले के छपोरा में भारतीय स्टेट बैंक की फर्जी शाखा संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले फरार 3 आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही मुख्य आरोपी अनिल भास्कर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों ने 6 व्यक्तियों को बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 7,71,000 रुपये की ठगी की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यही स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी।
1: आज उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, वज्रपात होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 4-5 दिन तक भी रहने की चांसेस है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक, तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मॉनसून आज का स्थिति में देखा है तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एंट्री होने में 3 से लेकर 4 दिन लगने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जगदलपुर में आयोजित बस्तर आम महोत्सव में किसानों ने आम की 2000 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1500 से अधिक किसान शामिल हुए। और चंडीगढ़ में 10 से 13 जून तक आयोजित राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव की हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 16 जून से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले में 295 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
9: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियाँ हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना, सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे।

थी आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है दैनिक प्रसारण सबरंग। पहले सुनिए ये संदेश।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सबरंग सुन रहे सभी श्रोताओं को अभिषेक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, चंद लम्हों में जिंदगी को समेटने की ख्वाहिश के फिक्रमंद हम पूरे लम्हों को जी लेने की कोशिश से जरा भटके हुए हैं। सब कुछ हासिल कर पाने के हुनरमंद लोग हैं। सुबह से शाम तक रेल की पटरियों के मानिंद दौड़ती जिंदगी को थामने की नामुमकिन कोशिश, घर की दहलीज चढ़ते ही नर्म बिस्तर पर आह भरकर सो जाती है। बंद आँखों से सपने देखने का जुनून रातें लंबी कर देता है। मंजिल पा लेना जिंदगी नहीं दोस्तों, सफर में बने रहना जिंदगी है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ढलती हुई शाम को सहारे की जरूरत होती है।

टिमटिमाते हुए दीपक की। दूर से दिखती हुई मंद रोशनी सुकून की रोशनी है। घर पर कोई है और इंतज़ार कर रहा है। दरवाजे पर की गई हर दस्तक प्यार और तोहफों से भरी होगी। कोई लिपट कर दूर कर देगा सारी थकन को। मोहब्बत से पुकारेगा, आवाज़ देगा और कहेगा,

तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, इसलिए तेरा गम उठा लिया मैंने। जहाँ भी तेरे कदम के निशान मिले मुझको, कसम खुदा की वहीं सर झुका लिया मैंने। चाहत से इबादत की तरफ बढ़ते कदम, प्यार इसकी आखिरी मंजिल होती है। नज़र से मिलके नज़रें सवाल करती हैं, जवाब ढूंढती हैं और कभी कभी खामोश रहती हैं।

लहजे बताते हैं अंदाज़ कैसा है बतियाना, हंसी ठिठोली करना और फिर अंदाज़ बयां करना। इसी तरह से अदाओं को लफ्ज़ मिलते हैं। इशारे कई बार लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलते हैं। दिल की सारी बातों को चुपचाप कहने का हुनर इशारों में होता है, और ज़रूरत होती है इशारों की।

इशारों से शुरुआत की गई बातों को नए रास्ते मिल जाते हैं। आँखों से चलकर दिल तक पहली बार कोई मीठी दस्तक पुकारती है। आवाज़ खनकती है, नज़रें झुक जाती हैं, हल्की खामोश उलझन मन के तारों को छेड़ देती है। बदल जाते हैं मौसम के अंदाज, आसपास कोई धुन बजने लगती है, एक हुक उठती है। ये सब होता है पहली बार जब कोई दिल छू जाता है।

अच्छी नींद की शुभकामनाओं के साथ अब सबरंग से विदा ले रहा है आपका रेडियो दोस्त अभिषेक। आप सभी को शिवरात्रि। दैनिक प्रसारण सबरंग अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एज बेस्टन बर्किंगम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ

0: शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई।

0: पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है SD बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, एक ही कलाकार आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं। ऐसे गीतकार को जिसकी बिखरी बालों के कारण उसे नाम मिला था बावरा। बिल्कुल सही श्रोताओं, वो नाम है गुलशन बावरा, जिनका असली नाम गुलशन कुमार मेहता था। एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और अभिनेता थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1937 को शेखपुरा पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1959 में फिल्म सट्टा बाजार के लिए अपने करियर की शुरुआत की और 1960 से 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में उभरे। श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 1973 में आई सुपरहिट फिल्म जंजीर के इस गीत से, जिसके लिए गुलशन बावरा को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

गुलशन कुमार के पिता का निर्माण व्यवसाय था। गुलशन कुमार ने देश का विभाजन देखा, शायद यही वो पल था जब इनके मन में कविताएं लिखने की इच्छा जाग उठी। अपनी कोमल भावनाओं को मन में समेटे युवा गुलशन जयपुर आ गए और आगे की पढ़ाई जारी रखी। जयपुर में उनकी बड़ी बहन ने उनका और उनके बड़े भाई का पालन पोषण किया। उनके भाई को नौकरी मिलने के बाद वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

गुलशन फिल्मों में आना चाहते थे और उन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन किया। उनकी नियुक्ति कोटा राजस्थान में हुई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो रिक्त पद भर चुका था। सौभाग्य से उन्हें अगली नियुक्ति मुंबई में क्लर्क के पद के लिए मिली और वे 1955 में मुंबई पहुंच गए। कल्याण जी, जो उस समय कल्याण जी वीरजी शाह के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने अपनी फिल्म चंद्रसेना में अभिनेता के तौर पर इन्हें पहली बार काम दिया। गुलशन ने पहली बार गीत 1960 में फिल्म सट्टा बाजार के लिए लिखे और यहीं से इनके गीतकार के तौर पर पहली शुरुआत हुई। मशहूर फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने इनका नाम बावरा रखा था। इसके बाद गुलशन अपने नाम के साथ बावरा लिखने लगे।

श्रोताओं, गुलशन बावरा जैसे सहज गीतकार बिरले ही होते हैं। बावरा सामान्य गुजरती हुई घटनाओं को भी गीत का रूप देने में माहिर थे। फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हम सभी ने सुना है। इस गीत रचना की कहानी दिलचस्प है। एक बार यूं हुआ कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गेहूं से भरी हुई बोरी से गेहूं के दानों को गिरते हुए देखकर गुलशन अनायास ही बोल पड़े, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। खास बात यह है कि फिल्म उपकार के रिलीज से कई वर्षों पहले इस गीत को गुलशन कलमबद्ध कर चुके थे। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो आइए सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत।

फिल्मों के लिए लगभग 240 गाने लिखने वाले गुलशन बावरा को कई पुरस्कार मिले। इसमें 1968 की फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती और 1974 की फिल्म जंजीर का गीत यारी है ईमान मेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। उनके लगभग आधे गाने आर डी बर्मन के साथ हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म जुल्मी, जो कि 1999 में रिलीज़ हुई थी, और आखिरी हिट फिल्म हकीकत, जो कि 1995 में रिलीज़ हुई थी, इसके लिए उन्होंने गीत लिखा था ले पपियाँ झपियाँ पाले हम। भारतीय फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाले गुलशन कुमार मेहता उर्फ गुलशन बावरा ने 7 अगस्त 2009 को 72 वर्ष की आयु में मुंबई के पाली हिल स्थित निवास पर अंतिम सांसें ली।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने। माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा हमेशा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: मिर्जा गालिब, गुलाम मोहम्मद, फिल्म अफसर, पंडित नरेंद्र शर्मा, सचिन देव बर्मन,
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Irak.
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
2: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि यह

0: party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.8 हिक मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।